एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के 31वीं तिथि। तदनुसार 21 जून सन 2026 इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों को सुनने के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड

0: इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं संवेद स्वर में गई इस मातृ वंदना से।

संवित स्वर में अभी आपने सुना ये मातृवंदना और भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में संत कबीरदास जी की ये भक्ति रचना।

अनुपमा देशपांडे और साथियों को अभी आपने सुना इस भक्ति रचना के लिए, और अब लीजिए सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना अनुपमा देशपांडे के।

अभी आपने सुना अनुपमा देशपांडे को मीराबाई की इस भक्ति रचना के लिए। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवा रहे हैं कुमार कांछा के स्वर में ये भक्ति रचना। शब्द रचना संजय प्रभाकर की है।

कुमार कांझा और साथी के गए इस भक्ति रचना के साथ है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का हमारा चिंतन कार्यक्रम केंद्रित है योग एक अप्रतिम शैली। चिंतक हैं डॉक्टर दिवाकर विद्या अलंकार।
1: भारतीय दर्शनों की विवेचना करते समय मानव मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला योग दर्शन आज के मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। सृष्टि के आदि से मनुष्य अपने जीवन को अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे अधिकाधिक पूर्ण और अर्थवान बनाने के लिए जीवन के किसी ऐसे महान स्रोत की तलाश में रहता है जहाँ से इसे अधिक रस प्राप्त हो और जीवन में पूर्णता, आनंद तथा सामंजस्य आ जाए। जीवन की इस पूर्णता और समस्वरता की प्राप्ति के लिए अनेक यत्न हुए हैं और इसके लिए दो मार्ग अपनाए जाते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार की जीवन शैली हैं। दोनों प्रकार की जीवन शैलियों से जीवन व्यतीत करने वाले हरेक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार का अधिकार है। मनुष्य किसी भी बाह्य स्थिति, वातावरण, भौगोलिक परिस्थिति, भिन्न राष्ट्रीयता, भिन्न धर्म, भिन्न संप्रदाय आदि का क्यों न हो, परंतु मनुष्य को शांति, आनंद, पूर्णता की अभिलाषा बनी रहती है। इसके लिए ऋषियों ने समय समय पर अनेक उपाय किए और उन उपायों की खोज में अपने संपूर्ण जीवन को साधनामय बना दिया। इन्हीं में से एक साधक महर्षि पतंजलि का योग मार्ग ऐसा मार्ग है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर अपने जीवन के चरम लक्ष्य आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा और परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग के अनुसार योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करते हुए परमानंद को प्राप्त कर सकता है। योग बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसका संबंध जीवन के प्रत्येक अंग से है, शरीर से भी है, मन से भी है और आत्मा से भी है। इस प्रकार यह योग जीवन शैली होकर जीवन के सभी स्तरों को प्रभावित करता है। योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है। योगाभ्यास से हम अपने श्वासों को नियंत्रित करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। शरीर के समस्त अंगों को विश्राम की अनुभूति होती है। योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य तो प्राप्त होता ही है, मानसिक बल भी प्राप्त किया जाता है। इससे मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों मन एकाग्र होता जाता है त्यों त्यों मानसिक शक्ति बढ़ती जाती है। मन के शांत होते ही स्नायु तंत्र को भी आराम मिलता है जिससे मनुष्य अधिक प्रसन्न, स्वस्थ तथा शारीरिक कांति का अनुभव करता है। स्वामी विवेकानंद ने मन की एकाग्रता बढ़ाकर समय को घटाने की बात कही।

0: रही है, जिसका अर्थ है कि एकाग्रचित्त होकर हम सभी प्रकार के कार्यों को अपेक्षाकृत कम समय में तथा अधिक कुशलता से कर सकते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान मन के जिन स्तरों तक पहुंचा है, योग दर्शन का यह विज्ञान उन स्तरों से आगे निकलकर मन के परे के दृष्टा तत्व का भी साक्षात्कार करवा देता है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान मनोविज्ञान के समस्त सिद्धांतों के बीज योग दर्शन में विद्यमान है। महर्षि पतंजलि मन के प्रकाशमय शक्तिशाली स्तरों को अपने शुद्ध सात्विक और ऋषि दृष्टि से जानते थे, इसलिए उन्होंने मन के सुधार और विकास के तत्वों को भली प्रकार प्रतिपादित किया है। वर्तमान काल मानव समाज तथा मनुष्य मात्र के लिए अशांति, असंतोष और विक्षोभ का समय है। संपूर्ण जगत में यह अशांति और विक्षोभ मनुष्य को बेचैन किए हुए है। मनोदशा की इस बेचैनी के सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न करना होगा। मन को ठीक करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो उपाय सुझाए हैं, वे सार्वकालिक और सार्वभौम हैं। योग दर्शन दर्शन शास्त्र होते हुए भी एक क्रिया प्रधान शास्त्र है, क्योंकि केवल विचार मनुष्य के मन में थोड़ा परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर क्रिया में आया हुआ विचार अधिक सफल परिणाम देने वाला होता है। योगाभ्यास से साधक चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। मन की इन्हीं शक्तियों के द्वारा मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, बाह्य और आंतरिक शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्यायशीलता और ईश्वर चिंतन आदि को सिद्ध करके शारीरिक और मानसिक बल तथा सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त कर सकता है। योग के इस सार्वकालिक और सार्वभौम लाभ को विश्व ने स्वीकार किया है, इसीलिए विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारत की प्राचीन योग जीवन शैली को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय किया। यह भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा की विश्व विजय है, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति का विश्व शांति का संदेश संपूर्ण संसार को शांति के मार्ग पर अग्रसर करेगा।
1: योग एक अप्रतिम शैली। आज का हमारा चिंतन कार्यक्रम केंद्रित था इस विषय पर। चिंतक थे डॉक्टर दिवाकर विद्या अलंकार। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पाठ का संगीतमय प्रसारण। श्रोताओं, आज से मानस गान का आरंभ हो रहा है। आज से आरंभ हो रहा है बाल कांड। गायक स्वर हैं पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र। संगीत संयोजन सतीश भट्ट।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। आज से प्रारंभ हुआ रामचरितमानस पास और इसमें आपने सुना मंगलाचरण। गायक स्वर पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र के थे, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि सामायिकी। इसमें आज सुनिए प्राकृतिक खेती क्यों और कैसे, जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश भार्गव।
1: किसान भाइयों, ये बहुत ही आवश्यक बात है कि प्राकृतिक खेती को समझना जरूरी है। प्राकृतिक खेती आज जो हम बात कर रहे हैं ये कोई नया शब्द नहीं है, ये हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। और आज से कई साल पहले जो बदलाव आया वो बदलाव ऐसा आया कि आज हम पूरी तरह रासायनिक खेती के ऊपर आधारित हो गए। दिनों दिन बदलते परिवेश में अधिकतम असंतुलित और अंधाधुंध रसायनों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग करते चले जा रहे हैं। तो ये असंतुलन इतना बड़ा कि इसमें बहुत सारे इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे, चाहे मानव स्वास्थ्य हो या मिट्टी का स्वास्थ्य हो या पर्यावरण हो। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती कम लागत के लिए जागरूकता अभियान चलाया और उस

जागरूकता अभियान में हम फिर से अपने प्राकृतिक संसाधन हैं जो जल जंगल जमीन और मिट्टी, इसको बेहतर रखने के लिए, सूक्ष्मजीवी क्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती करना फिर से एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इससे आशय यही है किसान

0: आज धीरे धीरे आप देखें
1: बहुत
0: कम होते जा रहे हैं। लोग उनको जो दूध उत्पादन के अलावा बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो पशुओं से मिलते हैं, गोवर्धन जैसे गोधन कहते हैं, तो उनको हमने अपने से अलग कर लिया, वो अलग ना हो उसको फिर से खेती में जोड़ें। तो ये सारे उद्देश्यों को लेके प्राकृतिक खेती को फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आने वाला समय हमारे लिए कम लागत की खेती में सामने आ सके। लाभ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो किसानों की आय आज बढ़ाने की बात है उसमें जो लागत है वो लागत काफ़ी हो गई है, और किसानों ने भी जो निर्भरता है वो रेडीमेड टाइप के हो गए हैं। जैसे हम कीटनाशक के लिए सीधे कोई दवा अगर हम अपने वहाँ कुछ बैलेंस संतुलन बना लें, कुछ हमारे जो संसाधन हैं वहीं उपलब्ध हैं उनसे प्रयोग कर लें, तो हमारे खेत में जो उप उत्पाद आ रहे हैं उनको वहाँ उपयोगी कैसे बना लें, तो ये सारे लाभों से खेती में जो लागत है वो कम होगी। और जो किसान की बाहरी आवश्यकताएं उनको कम करते हुए हम जो व्यवस्थाएं अपने फार्म से जो उपलब्ध हैं उनको वहीं की वहीं पूर्ति करें, एक दूसरे के एक समन्वित प्रयास बनाएं। पशुपालन, कृषि और इससे खेती में भी लाभ होगा, किसान की निरंतर और सतत आय भी मिलेगी और जो उससे उत्पाद आएगा उसका मूल्य भी अधिक होगा। धीरे धीरे इसके समय भी बदल रहा है, क्या है रासायनिक जैविक प्राकृतिक उत्पादों की अलग अलग मूल्य निर्धारित होगा, तो उस मूल्य से जो आय होगी किसान को अधिक होगी। जो परिवेश आज बहुतायत में देखने में आ रहा है, किसान भाई अंधाधुंध और एक प्रतियोगी रूप में खादों का प्रयोग कर रहा है, किसी किसान ने दो बैग यूरिया के यूज किए या सुपर किए तो दूसरा तीन ही करेगा, तो इसके लिए जागरूकता इसीलिए ज़रूरी है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप धीरे धीरे इसको अपने क्षेत्र में एक बीघा में, एक एकड़ में, दो एकड़ में करिए, हर सीजन में करिए, रबी में, खरीफ में, जायद में। और हम कई बार ऐसी सुनते हैं, बात करते हैं, साहब हमने अपने खाने पीने के लिए लगाया, इसमें हमने कोई खाद नहीं दिया।
1: जी, जी, जी।
0: वही प्राकृतिक खेती है। जब हम अपने को सुरक्षित रख रहे हैं तो हम अपने समाज को, अपने आने वाली संतति को, अपने पर्यावरण को, हमारे कुछ मूलभूत दायित्व हैं जैसे हम समाज के लिए जो हमको प्रकृति ने दिया है उसको संरक्षित करने, तो ये संभव करने के लिए हमको एकदम से बदलाव लाने से पहले हमको उसको खेत पर परखें और तब आगे बढ़ें। और उसको बढ़ने के लिए जब आपकी सफलता सामने होगी उसके, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कुछ उत्पाद उत्पादन में कमी आए, धीरे धीरे जब मिट्टी की तासीर बदलेगी, जब उसमें गोबर या गोधन है या गौमूत्र है, इसके जो आयाम हैं, इसमें प्राकृतिक खेती एक चार स्तंभ हैं इसके, वो चार स्तंभों को मैं बताना चाहूँगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है आच्छादन और पांचवा है वापसा।
2: प्राकृतिक खेती क्यों और कैसे, कार्यक्रम कृषि सामयिकी में जानकारी अभी आपको दे रहे थे डॉक्टर मुकेश भार्गव। FM बैंड 7.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। ये समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, यानी हमारी केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को जानने का। आपको बता दें, अब से बस थोड़ी सी देर बाद यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। लघु वार्ता सुनिएगा 7:05 पर। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इस संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। इसमें आप सुनेंगे अपनी ही फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत। 9:00 हम लेकर आएंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। इसमें चर्चाएं रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आइए जाने सबसे बड़ा दिन, और एक बच्चों के लिए प्यारा सा गीत भी हम लेकर आएंगे। 9:20 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा। 10:00 सुनी जा सकती है जिले की चिट्ठी, इसे हम आकाशवाणी

के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत में आज की कलाकार होंगी सपना अवस्थी। सुबह 10:23 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत।

सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 11:40 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। इसमें सुनिएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से

0: हमारी दोपहरकालीन प्रसारण सभा में दिन में एक बजे महिला कार्यक्रम में आज आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी के प्रस्तुति का कार्यक्रम ये आप सुनेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। FM एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। अद्य द्वादशः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्य वर्षस्य विषयः स्वस्थ वृद्धावस्थायै योगः इति विषयेण विश्वस्मिन् आचर्यते अयं दिवसः। मुख्य कार्यक्रमः पश्चिमबङ्गालस्य कोलकाता नगरे ऐतिहासिके रेड रोड स्थले आयोज्यते। तत्र प्रधानमन्त्री कॉमन योग प्रोटोकॉल इति सामान्य योगाभ्यासे अस्य अपि राष्ट्रस्य नेतृत्वं विदधाति। मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे अद्य राज्यस्तरीय अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमे राष्ट्रपतिः मुख्य अतिथित्वेन सहभागित्वं करिष्यति। सदर स्थिते गैरिसन ग्राउंड नामना प्रांगणे कार्यक्रमः प्रातः 7:30 आरभ्यते। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् आलक्ष्य अनेकेषु देशेषु योगाभ्यासस्य विशेषः उत्साहः दृष्टः। कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे ओंटारियो विधानसभायाः ऐतिहासिक प्रांगणे विशालं योगसत्रम् आयोजितम्। ब्राजील देशे प्रसिद्धे फोस डू इगुआकू जलप्रपाते अपि योगसत्रम् आयोजितम्। डेनमार्क देशस्य आरहुस नगरे योगदिवसः समारोहः सोत्साहं सम्पन्नः। अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयेन विशेषः योगदिवससमारोहः आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 15,000 वरिष्ठाः नागरिकाः सहभागित्वं कुर्वन्ति। राष्ट्रव्यापि समारोहाणां भागत्वेन आयोजितः अयम् उत्सवः स्वस्थवृद्धावस्थायै योगः इति राष्ट्रियविषयस्य अनुरूपम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कोलकातायां INS दुनागिरी इत्यस्य INS संशोधकस्य तथा INS अग्रय इत्यस्य नौ सैनिक पोतानां अनावरणं करिष्यति। एतेषु पोतेषु 75%+ स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः कृतः। ओडिशा राज्यस्य मयूरभंज जनपदे रायरंगपुर क्षेत्रे आयोजितायां जनसभा

0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सर्वे संतो निरामया, इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय, चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM एंड 100.2 MHz पर प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघुवार्ता हिंदोस्तां हमारा। श्रोताओं, राष्ट्रीय एकता हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की महती विशेषता है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। राष्ट्रीय का एकता का अर्थ है इन समस्त विविधताओं के बीच एकता और सामंजस्य बनाए रखना। यह भाव हमारे देश की संस्कृति एवं विरासत को सुनिश्चित रखने में मदद करता है। एकता व सामंजस्य एक ऐसी भावना और ऐसी शक्ति होती है जो देश को मजबूती प्रदान करती है। यह विविधता वाले समाज अथवा राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों के बीच अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो व्यक्तियों को सामान्य लक्ष्यों की ओर मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे शांति व सहयोग को बढ़ावा मिलता है। एकजुट राष्ट्र गरीबी, असमानता और संघर्ष जैसी चुनौतियों का बहुत ही प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। शिक्षा सम्मान और समझ के मूल्यों को विकसित करता है। यह एक विविधतापूर्ण समाज में राष्ट्रीय एकता विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समुदायों के बीच अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय एकता देशवासियों के बीच सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर भावना रूप से एकजुटता की भावना है। आपसी शांति, सद्भाव व सहयोग से ही किसी भी राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव होता है। भारत में व्याप्त अपार विविधताओं के कारण राष्ट्रीय एकता का विशेष

0: महत्व है। यहाँ आपसी भाईचारा, समन्वय व सहयोग पर विशेष बल दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो सभी जातियों, धर्म, भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद देश को एक सूत्र में प्रोय रखने का काम करती है। अनेकता में एकता वाले हमारे भारत देश में राष्ट्रीय एकता का अपना एक अलग महत्व और सर्वोच्च स्थान है और यह राष्ट्र की प्रगति व सुरक्षा के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं रीति रिवाजों के बीच आपसी सम्मान व सह अस्तित्व की भावना होती है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी शक्ति है और हमारी मजबूती का साधन है। इससे हमारे हृदयों में हम एक हैं कि अटूट भावना निहित होती है। इस भावना का संचार हमारे हृदय में होता है जो हमें राष्ट्रहित के महत्व को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित करती है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। राष्ट्रीय एकता एक ऐसा खजाना है जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश की शक्ति है, हमारे देश का गौरव है। इसलिए हम सभी को अपने देश पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए अपने अपने स्तर से, और यही हमारे भारतीय होने का कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है, हमें इसे निभाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे लघुवार्ता हिंदुस्तान हमारा, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ ही
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं।
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इन पोतों का डिजाइन नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों

0: से लैस है, वहीं आईएनएस संशोधक जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए और आईएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना ने बताया कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
1: सेना की विशेष विमान से शनिवार की शाम संस्कारधानी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रमों के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भोपाल, पांडुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, धार, पन्ना, बैतूल, बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए हैं और प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
2: आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्जाम दें। नीट के एग्जाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम निर्बाध रूप से सानंद संपन्न होगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो रेलवे रखरखाव कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई सुविधा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान की। इस अवसर पर 38,000 से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4-लेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है, यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है।
4: यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण शिविर भी लगाया है और कोशिश ये है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए जनता को भटकना ना पड़े इन जन कल्याण शिविरों में हो जाए। विकास की अनेकों सौगात बाड़ी को भी मिली है, विशेषकर तहसील भवन का है लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी की स्वीकृति मांगी थी, वो मूंग खरीदी की स्वीकृति हमने दे दी है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र की राशि के साथ प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि जोड़कर किसानों को हर साल 12,000 रुपए की सहायता दे रही है। इसके साथ ही भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के बरखेड़ी कला स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि गौपालक किसानों को सरकार हर महीने 1100 रुपये प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास जनता की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है और उनका लक्ष्य सुरखी के हर गाँव को सुविधा युक्त बनाना है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये योजना ई मंडी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है, जिसके तहत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सागर, उज्जैन और रतलाम समेत कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पवन चौक में गृह प्रवेश कार्यक्रम में 167 हितग्राहियों को नए घरों की सांकेतिक चाबियां, चेक और प्रमाण पत्र बांटे गए। शिवपुरी के मानस भवन, पांडुना के ग्राम रामाकुना और डिंडोरी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के ग्राम बिल्डोज में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कटनी में नीट परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष हेल्प सुविधा केंद्र शुरू किया गया। बड़वानी जिले में नीट परीक्षा के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,845 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट UG की पुनः परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनपढ़ की ये गजल। अल्फाज राजा मेहंदी अली खां के हैं और मौसिकार हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अब है आपने सुनी फिल्म अनपढ़ की ये गजल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब लीजिए सुनिए फिल्म आंधी में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत गुलजार साहब का है और धुन तैयार की है राहुल देव।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म आंधी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के

और परंपराओं को संजोकर रखे हुए। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं

0: स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्याम राय जगानी और कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से आप सबका वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल सहायक श्री गुरुराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिकारी श्री लीला त्रिपाठी जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं। पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संचार और संस्कृति का मतलब है सेहत आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ के लोगों की शालीनता संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कार धनी के नाम से घोषित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा मां नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है। रेवा के हर
1: को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे इस पावन गीत के लिए।

0: पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं, वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है, और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग, इस वर्ष

की थीम है, वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान विवेक विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदिगुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की यह नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सबके लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रातः काल के सत्र में

0: कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग के इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।

0: एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज़ आंधी तूफान में जो मजबूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं। और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: से बंद करिए, ओमकार के लिए श्वास भरिए।

धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़े की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटिचालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी।

श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंडासन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्रासन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए।
यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है, वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं, उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो, वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 टू 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते

हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे।

गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपालभाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए।

जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर रखिए। हथेली के अंदर आँखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।

धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन

0: जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
1: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव एवं भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की पहचान परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहि राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
0: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग की इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: 12वीं योग शिविर की उपस्थिति में मंच

विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले माँ नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाए। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जब अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं और योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ। आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजन, जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जन जागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है।
मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ।

करके योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुँचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 9.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत जो होंगे आप ही की फरमाइश पर। और पहला खत मेरे हाथ में नेपाल पैलेस सागर के इन श्रोताओं का, तिलक नारा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन और इनके बहुत से साथियों ने पत्र हमें लिखकर भेजा है और ये सभी सुनना चाहते हैं तीन देवियां फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनिए, आवाज़ किशोर कुमार और साथियों की है। मजरूह साहब ने गीत को लिखा है, सचिन देव बर्मन ने धुन तैयार की है।

0: ये थे किशोर कुमार और साथी। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और शशि कपूर को गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है और इसे हमने लिया है फिल्म सुहाग से। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। जय ही रमन बाबा। रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ अशोकनगर से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकुबाई, निशा, प्रियंका, ईशिका, कपिल, ब्रजभान कुशवाहा, बालाराम मेहर, नरेश प्रजापति, लक्ष्मण रायकवार, दातार सिंह शेखावत और खुशी कुशवाहा। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म सुहाग का ये गीत।
1: चलो कमाल। कहाँ ले जाऊँ, कहाँ जाना है? अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है
2: क्या?

ये थे आशा भोसले और शशि कपूर फिल्म सुहाग के इस गीत के लिए। और अब जी सुनिए हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारानी, सूरज ठाकुर, ज्योति, बाबू रियाज ठाकुर और इनका पूरा परिवार, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धनवान का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और सुरेश राठकर ने। साहित्य गीत है, हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीत दिया है।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को अभी आपने सुना फिल्म धनवान के इस गीत के लिए। और अब लीजिए सुनिए एक बार फिर से लता मंगेशकर को, इस पर साथ है मोहम्मद रफ़ी और इसे हमने लिया है फिल्म काला पत्थर से। सुनना चाहते हैं आप सब ग्राम पेपर सभा शिवपुरी से सुनील वर्मा, संजीव धाकर, धर्मेंद्र, सुनील, जितेंद्र, मानसी, शशि और इनके बहुत से साथी। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म काला पत्थर।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म काला पत्थर के इस गीत के लिए। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है बच्चों के लिए उनका कार्यक्रम बाल

जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपकी दीदी आपके साथ हूँ, आपके कार्यक्रम के साथ हूँ। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी प्यारी सी और अच्छी, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगी और बहुत ही अच्छी आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी लाइफ स्टाइल को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए, उसका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ होंगी प्यारे बच्चों। आप सभी हमारे बच्चे ये जानते हैं कि आज हमारे बहुत से बच्चे, बहुत से माने कुछ बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, यानी 9th और 10th में पढ़ते हैं, तो वो हमारे बच्चे आज स्थानीय पोलो ग्राउंड पर ज़रूर ही गए होंगे। जी हाँ, क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे और इसका आयोजन पोलो ग्राउंड पर गरिमापूर्ण तरीके से किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, NCC, NSS अधिकारीगण, नेतागण और आम नागरिकों ने प्रतिभाग किया। प्यारे बच्चों, योग के बारे में तो आप जानते होंगे और आपने ये नाम ज़रूर ही सुना होगा और ये भी सुना होगा कि योग भगाए रोग, योग रखे निरोग। तो भाई, इसमें बहुत सी अच्छाइयाँ, बहुत सी अच्छी बातें ज़रूर होंगी। जो रोगों को भगाता है तो रोग मुक्त हमें करता है, तो ज़रूर ही ये तो महत्वपूर्ण हुआ। तो प्यारे बच्चों, जो योग है वो मानव शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाए रखने में अपना बड़ा रोल अदा करता है। जी हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका होती है योग की हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में। प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और कहीं कहीं इसके आयोजन किए जा चुके हैं, मनाए गए हैं और इसके महत्व को बताया गया है। बच्चों, यह भारतीय प्राचीन परंपरा का प्रतिरूप है। इसे मनाने की ऐतिहासिक पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी और इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और प्रथम बार इसका आयोजन 21 जून 2015 को किया गया। जी हाँ बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रथम बार 21 जून 2015 को मनाया गया। इस वर्ष इसका मुख्य आयोजन पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर कोलकाता में किया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: संबोधन किया और उनके मुख्य आतिथ्य में इस आयोजन को किया गया। बच्चों आपको बता दें कि हमारे राज्य मध्य प्रदेश में इसका मुख्य आयोजन जबलपुर में किया गया। आज के इस योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू रहीं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इसमें शामिल रहे और डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। बच्चों योग दिवस को मनाने का उद्देश्य तन और मन दोनों को स्वस्थ व संतुलित बनाए रखना है। अब इससे ज़्यादा क्या ही अच्छा होगा कि हमारा शरीर और हमारा मन मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। क्योंकि प्यारे बच्चों जब तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं तो हम आगे का काम बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं और हमारे प्यारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा और बेहद ख़ास है। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप नियमित रूप से रेगुलरिटी के साथ स्कूल जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इससे आपका जो मस्तिष्क है वो भी बहुत अच्छे से रहेगा, तो आपको बहुत देर तक और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा हर चीज़ें, तो विद्यार्थी के लिए भी बहुत ही खास है। और प्यारे बच्चों इसे अब हम आपको बताएं कि 21 जून को ही इसलिए क्यों इसे मनाया जाता है, तो 21 जून भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भौगोलिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से सूर्य की इस स्थिति को बहुत ही सकारात्मक माना जाता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है जिसमें उत्तरी गोलार्ध में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जी हाँ, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को यानी आज के दिन को सबसे लंबा दिन माना जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आज का दिन ठीक इसके विपरीत होता है यानी यह सबसे छोटा दिन होता है। हमारे यहाँ आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, तो आज के इस दिन को यानी 21 जून को खासकर संडे को, क्योंकि आज 21 जून के साथ साथ है संडे और ये आपके लिए संडे का दिन होता है फन का, मस्ती का, तो बिल्कुल अपने आज के संडे को बनाएं फंडे। और इस फंडे पर और भी ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब फंडे की बात चली है कि संडे को आपको फंडे बनाना है तो फुल एंजॉय, मस्ती और धमाल, तो मस्ती और धमाल संगीत के बिना तो अधूरा होता है।
1: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you.

तो प्यारे बच्चों, सुना आपने ये गीत मस्ती और धमाल से भरा हुआ। तो बिल्कुल ही आप संडे को फंडे ज़रूर बनाएं और अपने साथ साथ इस फुल एंजॉय और मस्ती धमाल के साथ साथ वो भी करिए जो आपके मन मस्तिष्क के लिए और शरीर के लिए लाभदायक है। आउटडोर गेम्स पर विशेष फोकस रखिए, स्विमिंग को भी अपनी जीवन शैली में शामिल करिए। और आजकल तो हमारे बच्चे अपने कुछ स्कूलों में स्विमिंग का आनंद लेते हैं, तो संडे को आप किसी भी वाटर पार्क में जाकर एंजॉय कर सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां आपको बहुत अच्छा लगे, जहां आप मस्ती कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, फन और मस्ती के माहौल में अपने परिवार या पेरेंट्स की बातों को ना भूल जाएं, उनकी बातों को ना माने, ऐसा ना करें, बल्कि आपको अपने पेरेंट्स और अपने परिवार में जो भी आपसे बड़े हैं उनकी बातों को फॉलो ज़रूर करना है, उनको मानना है, क्योंकि संडे को अगर फंडे बनाना है तो इसमें परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक परिवार के सदस्य साथ नहीं होंगे, सब हम सब मिलेंगे नहीं एक साथ, बहुत सारे लोग मिलकर नहीं जाएंगे तो फंडे हो ही नहीं सकता है, मस्ती हो ही नहीं सकती। जितने ज़्यादा लोग उतनी ही ज़्यादा मस्ती, और वही सब करना होता है हमें। और आज का जो संडे है वो तो बेहद ही ख़ास होने वाला है हमारे बच्चों के लिए, है ना। कुछ बच्चों ने हमारी तैयारी भी कर ली होगी, क्योंकि जो हमारे प्यारे से बच्चे हैं वो आज बहुत से बच्चे कहेंगे, सभी बच्चे एक बहुत प्यारा सा संडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये संडे इसलिए ख़ास रहेगा क्योंकि आज फादर्स डे, जी हाँ, आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। तो यूं तो कोई भी एक दिन किसी के लिए भी नहीं होता है, बस यूं कहें कि एक बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा स्पेशल डे बनाने के लिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ये होता है। क्योंकि हम अपने जो फीलिंग्स हैं वो हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, कभी गिफ्ट के माध्यम से और कभी इसके ज़रिए कि हम बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट उनको अगर दें तो ये जो डे है वो स्पेशल हो जाता है। बाकी तो हम सभी, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं वो सभी अपने पेरेंट्स का, अपने घर के जो और अन्य सदस्य हैं उन सभी का रिस्पेक्ट उनको देते हैं। बस एक बहुत ज़्यादा टाइमिंग जो है स्पेंड करने का, एक मौका मिलता है, एक वक्त मिलता है उसको गुजारने का और बहुत कुछ अच्छा सा करने का, अपनी फीलिंग्स उनको बताने का, ये सभी चीज़ें होती हैं और होती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और जब हम एक साथ होते हैं तो हमें काफ़ी कुछ इन्जॉय करने का, एक दूसरे को की भावनाओं को समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही हमें आगे बढ़ाने में, या हम कहें कि मान लीजिए अगर आज अपने अपना दिन जो है अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर फादर्स डे है तो माँ तो कहीं पीछे छूटेगी नहीं, तो अगर आप उनके साथ अपने आज के इस दिन को स्पेंड करना चाहते हैं तो ये भी तो होगा कि उनके कुछ जो एक्सपीरियंस हैं, उनका जो एक अनुभव है वो साझा आपके साथ करेंगे। और उन्होंने अपने पापा के साथ अगर फादर्स डे सेलिब्रेट किया होगा तो वो बताएंगे कि वो पहले किस तरह किया करते थे और अब किस तरह से जो समय में परिवर्तन हो गया है तो कैसे होता है, क्योंकि परिवर्तन बच्चों प्रकृति का नियम है और इसके साथ हमें बदलते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें और हम अपने परिवार के साथ भी जुड़े रहें, यानी हम अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को ज़रा भी ना भूलें, उनको साथ लेकर हम चलें। और जब हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी हम कह सकते हैं कि कभी भी हमें नाकामयाबी हाथ नहीं लगेगी, हम असफल नहीं होंगे। क्योंकि जब हम अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो बातें ज़रूर ही, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो बिल्कुल ज़रूर ही हमारे काम में आती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं तो वही जो बुज़ुर्गों के या हमारे पेरेंट्स के या हमारे बड़े भाई बहनों के अनुभव होते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे काम आते हैं और उन्हें हमें समझना ही चाहिए। तो बस यही हम कामना करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने फादर्स की और अपने घर के जो बड़े हैं
उनके अनुभवों को समझेंगे, उनकी बातों को, उनको फीलिंग्स को समझेंगे, उनको साझा करेंगे और साथ ही अपनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बातों को उनके साथ बोलेंगे, उनके उनके सामने उनके समक्ष रखेंगे और इन्जॉय करेंगे, तो वो भी आपको समझेंगे। जहाँ तक बात है आज फादर्स डे की, तो चलिए एक ये प्यारा सा गीत याद आ रहा है तो थोड़ा सा आपको सुनवा देती हूँ और मैं भी सुनती हूँ।

तो प्यारे बच्चों, ज़रूर ही अच्छा लगेगा आपको ये वाला गीत। और प्यारे बच्चों, आज के संडे को एंजॉय कीजिए मस्ती और धमाल के साथ, अपने अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और जो भी आपके घर परिवार में है और जो पिता स्वरूप और माता स्वरूप होते हैं, उन सब के साथ आज के संडे को पूरी तरह से एंजॉय करिए और फन डे बना दीजिए और यादगार बना दीजिए। कुछ ऐसी ही कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। अपने रेडियो दीदी परवीन को दीजिए अब अनुमति। प्यारे बच्चों, जय।

अभी बच्चों के लिए प्रसारित किया गया उनका कार्यक्रम बाल सभा एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अपनी ही फरमाइश पर कुछ गीत। तो आपकी फरमाइश में ये जो पहला गीत है वो जो पहला ख़त है मेरे हाथ में है ग्रामा पोस्ट देहरो तहसील कोलारस के हमारे इन श्रोताओं का। आप सब श्रोता हैं और आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत सुनने के लिए। इसमें आवाज़ है लता मंगेशकर अनूप जलोटा की, आनंद बख्शी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन तैयार की है और पत्र को लिख भेजा है अभी रावत, अनन्या रावत, विमल शर्मा, भरत शर्मा, उमा गोस्वामी, सुहानी गोस्वामी और शिव नारायण अग्रवाल ने। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म एक दूजे के लिए का ये।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को, आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। साहिद का गीत है, खयाम साहब ने तर्ज बनाई है और इसे हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। इसे सुनने की ख्वाहिशमंद हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म कभी कभी का ये गीत।

कभी कभी कभी इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। एक बार फिर से सुनिए किशोर कुमार को, इस बार साथ हैं आशा भोसले और फिल्म से लिया है इसे हमने कस्मे वादे। जी हाँ, फिल्म कस्मे वादे का गीत अभी आप सुनेंगे। गीत को लिखा है गुलशन बाबरा ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है। और इसे सुनने के लिए खत हमें लिख भेजा है ग्राम रौनीजा से राजेश वाल्मीकि, विजय वाल्मीकि, अरविंद राजन, डॉक्टर महेश जैन, कल्लू जैन और इनके बहुत से साथियों ने। आप सभी सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म कस्मे वादे का ये दो।

फिल्म कस्मे वादे में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को, और अब फिल्म रॉकी में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये सभी श्रोता। पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा, शिवा, वर्षाबाई, पूनमबाई, मोहिनी कुशवाहा और इनके परिवार के अन्य सभी सदस्य। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म रॉकी का

फिल्म रॉकी में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। कार्यक्रम है फिल्म संगीत, इसमें आप सुन रहे हैं आप ही की फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत, और इसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अभी ये सुनिए सोनू निगम अलका याग्निक को, जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है अनु मलिक ने, और इसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम दावरदेही पोस्ट सनोरा तहसील करैरा से आशा, मुस्कान, शोभित, बंटी, नीलम, प्रियांशी, पंकज, जलज और इनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म बॉर्डर।

सोनू निगम और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर से, इस गीत को हमने लिया था। और अब लीजिए सुनिए फिल्म रेडी में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार को। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सब, गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर शिवपुरी से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, छोटू, सपना, मिन्नी, खुशबू, रीना, रेखा, ममता और समस्त नामदेव परिवार सुनना चाहता है फिल्म रेडी का ये गीत। आप सभी के लिए पेश है फिल्म रेडी का ये गीत, लीजिए सुनिए।

राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की गाए फिल्म रेडी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के।

0: प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे शहडोल जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योग किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। जिले के स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में भी एक साथ योगाभ्यास कराया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। भारत सरकार ब्लॉक, तहसील और जिला पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में IIPA दिल्ली की 2 सदस्यीय टीम शहडोल पहुंची है। टीम नागरिकों और अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी शहडोल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोक पिट का निर्माण कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरिगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जाँच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुँचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सपना अवस्थी के गाए कुछ गैर फिल्मी।

अभी आपने सुना सपना अवस्थी की आवाज़ में, ये गैर फिल्मी गीत थे। आपको बता दें, सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं सपना अवस्थी। उन्हीं के गाए कुछ और गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए ये प्रमो योग।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे सपना अवस्थी को। इस गैर फिल्मी गीत के लिए और इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 14.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अभी ये प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजीगर का ये गाना। आवाजें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक।

अभी आपने सुना विनोद राठौर और अलका याग्निक को फिल्म बाजीगर के इस गीत के लिए, और कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए ये योगा

अभी आप सुन रहे थे ये योगा गान और कार्यक्रम फिल्म संगीत में। अब लीजिए सुनिए फिल्म डकैत का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत है, राहुल देववर्मन का संगीत।

के और सुनिधि चौहान को अभी आपने सुना फिल्म खट्टा मीठा के इस गीत के लिए। और अब लीजिए सुनिए फिल्म याराना में किशोर कुमार को, गीतंजन का है, संगीत राजेश।

0: किशोर कुमार की गायक फिल्म याराना के इस गीत के साथ है कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन करें गीत सुने कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और STD कोड है 075। इस दौरान फोन करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉल लगाने से पहले अपने पास कम से कम 2 गीत और उनकी फिल्मों के नाम अवश्य तैयार रखिए। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
2: फोन करें गीत सुने।
1: जी फोन करें गीत सुने, कौन बोल रहे हैं बताइए।
2: जी मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ, सरग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह।
1: तो लक्ष्मण सिंह जी क्या करते हैं?

0: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी करते हैं, अभी खेत में क्या बोया है?
0: तैयारी चली सरसों, अभी बो भी की
1: जी। अभी आप खेत तैयार कर रहे हैं ताकि बोया जा सके।
0: गर्मियों में मूंग बोई थी सर, कटाई हो गई, बखानी वगैरह हो गई है।
1: तो अब क्या बोने का इरादा है आपका?
0: अब सर सोयाबीन और उड़द बोएंगे, मक्का भी, तीनों चीजों को बोएंगे।
1: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
0: आज फिल्म हरियाली और रास्ता को सुनना है सर, मुकेश की आवाज में गीत है सर
1: जी,
0: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ।
1: ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
0: सर बहुत पसंद है, उसके बोल अच्छे।
1: जी जी, बोल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेट सॉन्ग है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करेगी, सुने।
1: सर नमस्कार, मैं गावली हेदिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। सर
0: बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, दिनेश चौहान जी। क्या करते हैं आप?
1: मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वायरिंग का।
0: मोटर वायरिंग का काम करते हैं।
1: हाँ,
0: ओके,
1: जो कूलर पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, वो जल जाते हैं ना।
0: बहुत बढ़िया। तो अभी तो आपका बिल्कुल सीजन का टाइम चल रहा होगा, अभी तो बहुत बिजी होंगे आप।
1: हाँ, बहुत बिजी है सर, क्योंकि सीजन का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से पंखा मंखा वायरिंग करते हैं।
0: ठीक है,
1: उसके साथ आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ज्यादा, तो हमको फोन इन
0: बिल्कुल
1: प्रोग्राम अच्छा
0: बिल्कुल
1: लगता है।
0: बिल्कुल। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे हैं, या रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप काम करते करते ये रेडियो सुन भी सकते हैं, काम भी हर्ज नहीं होता, और इसके अलावा काम में आपका और अधिक मन लगता है रेडियो के
1: हाँ,
0: सुनते
1: सही बात
0: सुनते,
1: बोले सर आपने,
0: है
1: तो
0: ना।
1: गाने वाने सुनते रहते हैं अच्छा लगता है, और थोड़ी मतलब ये जो श्रोताओं की बात सुनने के लिए मिलती है, तो इसमें जानकारी भी मिलती रहती है, तो और अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ अपने को मिलती रहती, कई श्रोता ऐसे होते हैं, कई जानकारियाँ देते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानकारियाँ आपको मिलती है ना। तो आज क्या सुनना चाहेंगे दिनेश जी?
1: सर फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना।
0: तो दिनेश चौहान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो हेलो
0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ।
1: और सर मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
0: मौसम भी ठीक है, बीच का है, ना गर्म है ना नरम है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और सर और सब बढ़िया?
0: बढ़िया। आप बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आप क्या कर रहे हैं?
1: हम सर जी हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे भागचंद जी?
1: आज फिल्म का आज सुनवा देना, लव स्टोरी फिल्म का गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: देखिए गाना कोई और बता रहे हैं और पिक्चर का नाम कुछ और बता रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो 1942 है, लव स्टोरी का है।
1: हाँ ये वाला ना हो तो दूसरा बता दें सर।
0: नहीं नहीं, ये पिक्चर का नाम लव स्टोरी नहीं है, 1942 ए लव स्टोरी है। चलिए तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी, सुने।
1: हाँ नमस्कार साहब,
0: नमस्कार।
1: दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल, दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ साहब, राजेश अग्रवाल।
0: राजेश अग्रवाल, तो राजेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: वो पिक्चर का गीत है या धर्मेंद्र की पिक्चर है 1980 की
0: जी, गीत के बोल।
1: मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा गीत है। वो हाँ रफी साहब और आशा जी की आवाज
0: बड़े ही मतलब अलग से टाइप की पसंद है आपकी, यही गीत सुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं वो तो सर अच्छा लगता, आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों की तो जोड़ी ही अपने आप में एक गीत की श्रेष्ठता की पहचान हुआ करती। तो चलिए गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।
1: धन्यवाद सर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, बहुत प्रयास के बाद लगाया सर, करीब 175 बार लगा चुकी हूँ कॉल।
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं नौकरी से मीना दसौंधी बोल रही हूँ।
0: मीना दसौंधी खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: जी सर।
0: जी मीना दसौंधी जी, मेरे से शायद आपकी पहली बार बात हो रही है।
1: जी सर, पहली बार हो रही है। सर आपका शुभ नाम?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप क्या करती हैं मीना जी?
1: सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: किचन का काम छोड़ के कॉल कर रही थी 10:30 बजे।
0: जी जी जी जी।
1: घर जाके अब लगा।
0: जी जी, क्या सुनना चाहेंगी मीना जी आज आप?
1: सर मुझे कल फादर्स डे है, तो मुझे बॉस पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। मेरे पिताजी को डेडिकेट करूंगी सर, वो इस दुनिया में तो नहीं है अभी, उनका मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उन्हीं के लिए बॉस पिक्चर का सुनवा दीजिए। ईश्वर अल्लाह दोनों रब है, नूर खुदाया तुझमें सब है।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जबकि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है ना। और हमारा
1: जी माता पिता की वजह से उन्हीं की देन है।
0: जी जी जी, आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो केवल उनके संस्कार हैं। और है ना,
1: पहले वो फिर अपन।
0: वही जी जी जी। और जो लोग इस बात को मानते हैं वो निश्चित ही मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया होते हैं, है ना।
1: वैसे और तो सर हर रोज फादर्स डे मदर्स डे होता है, हर दिन उन्हीं का है, लेकिन ये स्पेशल डे है तो स्पेशल रूप से मनाना पड़ता है।
0: जी जी, देखिए हमारे जन्मदाताओं को मान दिए बगैर हम कुछ है ही नहीं, है ना। और उनको मान देंगे तो हमारे रास्ते अपने आप सारे खुलते चले जाएंगे, और रास्ते कितनी भी परेशानियां आए वो मिनटों में आपकी शायद गायब हो जाएगी, है ना।
1: माता पिता, गुरु, शिक्षक और एक भगवान, ये 4-5 तो बिल्कुल आदरणीय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही यही। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम
1: नमस्कार।
0: फोन करें गीत सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी किससे बात हो रही है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हम ग्राम कानासड़ा, तहसील कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे
0: राजेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हैं। हम ब्लेंड हैं तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं, दुकान चलाते हैं और संगीत से प्रेम है तो
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: नाल
0: बढ़िया।
1: बजाते हैं और गायकी भी करते हैं।
0: क्या बजाते हैं?
1: नाल नाल
0: नाल? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है।
1: के मतलब ढोलक।
0: ढोलक बजाते हैं?
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ये गीत हो, संगीत हो, है ना, ये तो बड़े हमारा जो समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं और उसके बाद में किराने की दुकान भी चलाते हैं, ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपनी आजीविका खुद अर्जित करते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: तो
1: रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है। कम से कम मुझे 30 साल हो गया रेडियो सुनते हैं। मैं रेडियो का सुन से बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे रेडियो बिना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
0: रेडियो है ही ऐसी चीज़ भाई, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब भी रेडियो सुनते सुनते पढ़ा करते थे। और किसी ने हमको बताया, रेडियो सुनते सुनते जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो तरफ दिमाग रहता है, तो दिमाग बढ़ता है। पता नहीं वो
1: हाँ, अब
0: बात
1: तो
0: कितनी सही थी
1: अलग
0: कितनी गलत, लेकिन उसमें ही बड़ा मज़ा आता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए रेडियो से बड़ा अच्छा, जबकि मेरे यहाँ डेक रखा हुआ है दुकान सबको, लेकिन मैं बजाता नहीं, रेडियो बजता है मेरा बस।
0: जी।
1: बहुत दिन में आपके यहाँ मेरा फोन लग पाया, कम से कम 6 महीने से मेरी आज बात हो रही है।
0: तो ये बताइए कि आज क्या सुनना चाहेंगे राजेश जी?
1: मुझे आज
0: देखिए राजेश जी, हम पहले ही बोलते हैं कि दो गीत आप तैयार रखिए और दो फिल्मों के नाम, है ना।
1: हाँ, सही कहा आपने।
0: हाँ, बताइए
1: उसका सुना दीजिए। खिलौना फिल्म है, खिलौना,
0: जी।
1: अगर वो गाना है लता जी ने गाया हुआ है, तू कनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। वो एक खिलौना लता जी की आवाज में है, बहुत सुंदर गीत है और मुझे पुराने गीत ही सुनने का शौक है।
0: बहुत अच्छा, पुराने गीतों में एक रस आनंद तो होता ही है, कुछ यादें भी हम लोगों की जुड़ी होती है पुराने गीतों से, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है और गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत
1: जी
0: का
1: जी जी
0: आनंद।

0: अभी आपने सुना खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब संपन्न होता है। अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देना है
1: साइलेंट में रखो पहले नीरज,
2: ये दरवाजा लटकवा देना भैया, दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा।
3: नमस्कार श्रोताओ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह, ऊर्जा, शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं, हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नजर में दामन पाक जरूरी है, हया नजर में दामन पाक जरूरी है, जो भी है बात साफ साफ जरूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुंचे मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। ये पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कार धानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहाँ ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3री बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाईकोर्ट की नई बहुमल्या इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती माँ नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने

कई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मरमर ध्वनि

0: वरदान है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: ऑनलाइन डिस्कनेक्ट है।

दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। आरडीवीवी की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गोंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। अपन को ये माइक मिलना चाहिए।

आप हैं विविध भारती भोपाल के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

है, दमक रहा है। दीर्घ पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है। और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

माननीय राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
3: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायकगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय की कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि ए प्लस से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है व 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरम्भ किए गए। BTech, कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को, 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियाँ, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 पीएचडी धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 डीएससी और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है, जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को गौरव की
1: अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी, कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि, शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी, कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021, दीपांशु मिश्रा, एमए हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण।

कल्याणी त्रिपाठी, एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तालियां बजती रहें। कल्याणी त्रिपाठी, एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी, 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी, एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा, 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू, बीए हिंदी परीक्षा, 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी, एमए इतिहास, 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हम उनको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसके कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर

पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े, जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। तो 3 स्वर्ण

संस्कार धानी एवं संघ मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष सम्मान और गौरव का

बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।

विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रमों चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातियों पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातियों समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए। जनजातियों ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहाँ पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बोल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसे सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के

ज्ञान विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रहे, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान कर। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहे हैं। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा, दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है। देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में है। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, आंतरिक अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। परंतु इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन

0: कि हम झेल रहे हैं उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्थान क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वली उल्लाह खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन कुमार यादव का। अब मैं रविंद्र दुबे आपको ले चलता हूँ अपने स्टूडियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यह आकाशवाणी मध्य

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आ अब लौट चलें फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और जसविंदर नरूला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जब वी मेट फिल्म से है। उस्ताद राशिद खान ने इस गीत को गाया है, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत

केसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना? इसे गाया था अरिजीत सिंह और असीस कौर ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह की ही आवाज में। फिल्म का नाम है कलंक।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं विनोद कुमार सेन और साथियों का गाया विकास

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी शिवपुरी से ही लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण दाते के गाए भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुजर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं, वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास

0: था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा में देश भर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। एनटीए ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास

0: अभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
4: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
4: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
5: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
6: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
6: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरान

0: प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

महिला सभा कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी बहनों को डॉक्टर संगीता भास्कर का प्यार भरा नमस्कार। ऐसी है हमारी सभी बहनें, हमें ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि हमारी सभी बहनें अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं मस्त होंगी और इंतजार कर रही होंगी हमारे इस कार्यक्रम का। तो आइए बहनों, हम आपके साथ एक बार फिर से लेकर आए हैं मौज मस्ती, स्वास्थ्य, नई नई जानकारियों, नए ज्ञान से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाने की विधि भी। बहनों, स्वस्थ रहना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है और जैसा कहा भी जाता है, हेल्थ इज वेल्थ। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या फिर बरसात, कोई भी मौसम क्यों ना हो, जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा हमारी जिंदगी का मजा ही खराब हो जाएगा। चाहे हम कितना अच्छा भोजन खा लें, कितने महंगे पेय पदार्थ ग्रहण कर लें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों की सवारी क्यों ना करें, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा

0: तो उस सब बेकार सा लगता है। तो बहनों, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सबसे जरूरी है सुबह सुबह उठकर योगाभ्यास करना। बहनों, आज है 21 जून और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की शुरुआत भारत के प्रस्ताव पर 2015 में हुई थी, जिसे भारत की प्राचीन संस्कृति का एक अनमोल उपहार माना जाता है। मैंने क्या आपको पता है कि यह योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और जिसे हम ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्योदय जल्दी होता है तथा सूर्यास्त देर से होता है, जो प्रकृति और मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस दिन को जीवन और योग के अभ्यास की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सभी बहनों ने आज से योगा करना प्रारंभ कर दिया होगा, क्योंकि चाहे हम कितनी भी दवाएं बीमारियों में खा लें, लेकिन जब तक हम योगा नहीं करेंगे, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी और हम बीमारियों से नहीं बच पाएंगे। तो आज विश्व योग दिवस पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं एवं पूरे परिवार को योगा करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो बहनों, योग दिवस के अवसर पर ही हम आप सुनते हैं एक भेंट वार्ता, जिसका विषय है दैनिक जीवन में योग का महत्व, और जिसमें श्रीमती अनीता मिश्रा से बातचीत कर रही हैं हमारी सखी श्रीमती हेमलता चौधरी।
1: बहनों, मानव जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग का महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो जीवन में योग अपनाना होगा, और योग का निरंतर अभ्यास मनुष्य को बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से गुण हैं योग में, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए तो योग और भी महत्वपूर्ण है। तो हमारी बहनों के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, इन सभी बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हम आपके बीच जानकारी देने के लिए लेकर आए हैं योग प्रशिक्षक श्रीमती अनीता मिश्रा जी को। हमारी बातचीत का विषय है दैनिक जीवन में योग का महत्व। सबसे पहले मैं सभी सुनने वाली बहनों की ओर से अनीता जी आपका अभिवादन करती हूँ। नमस्कार, और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला हम इसी तरह प्रारंभ करते हैं कि योग है क्या, इसके कौन कौन से अंग हैं, विस्तार से हमारी बहनों को आप बताएं।
2: सभी बहनों को सादर नमस्कार। हम देखते हैं कि आज का मानव भौतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सक्षम है, लेकिन आध्यात्मिक एवं भौतिक दृष्टि से मानव का विकास रुक रहा है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान कर सके, एवं योग में वह शक्ति है जो मनुष्य को आंतरिक एवं बाहरी इतना स्ट्रांग बना देती है कि हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दुख और कष्टों से जो लोग पीड़ित हैं, उन सभी के दुखों का निवारण एक ही औषधि है, वह है योग।
1: बहुत सुंदर शब्दों में आपने हमारी बहनों को समझाया कि योग क्या है, योग में क्या शक्ति है, योग में क्या क्षमता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और योग के द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का शमन भी किया जाता है। हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते हैं और देखा भी है। योग के बारे में हम अपनी बहनों की ओर से आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसके कौन कौन से अंग हैं, जैसे कि यम, नियम, प्राणायाम, इनके बारे में आप विस्तार पूर्वक हमारी बहनों को बताएं।
2: जी, मनुष्य को निरोगी रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है। जैसे कि प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, हमारे जीवन में प्राणायाम बहुत जरूरी है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, ये हमारे प्राणायाम है। और सूक्ष्म व्यायाम जैसे हाथों के, पैरों के, गर्दन के, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम है, और हमें प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अनुलोम विलोम कहा जाता है कि प्राणायामों का राजा है, सारी बीमारियों को दूर करता है। अगर अपन लोग 5 मिनट से शुरुआत करते हैं और आधे घंटे तक अपन अनुलोम विलोम करते हैं, तो सारी बीमारियां, जैसे सिर का दर्द है, माइग्रेन है, जो जीने चढ़ते हैं, उनको हापी आती है, उनके लिए अनुलोम विलोम अति कारगर है। और जैसे कपालभाति है, पेट में जैसे कष्ट हो जाना, कोई भी किसी भी शरीर में अंग में अगर अपने कोई गांठ हो जाती है तो अपन कपालभाति करें तो उससे बहुत लोगों की गांठ बहुत ठीक हुई है।
1: जी जी, अर्थात जैसे आपने बताया कि प्राणायाम में मुख्य रूप से प्राणायामों का राजा है अनुलोम विलोम, श्वास प्रश्वास का जो क्रम होता है उसमें हम जब एक उचित ढंग से करते हैं तो उसे प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणों का आयाम जैसा कि उसके शब्द से ही स्पष्ट है, तो हमारी जो बहनें इस प्राणायाम को अपनाएंगी, अपने दैनिक जीवन में करेंगी, तो जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनसे भी निजात पा सकती हैं। बहनों की ओर से मैं यह भी जानना चाहूंगी कि प्राणायाम, योग या सूक्ष्म व्यायाम जो भी करना है, इनका एक निश्चित समय होता होगा या ये कभी भी कर लें, इस बारे में आप हमारी बहनों को बताएं, एक निश्चित समय और एक निश्चित अवधि।
2: जी, निश्चित समय तो इसका यह है कि सुबह सूर्य उदय से होने से पहले अगर अपन प्राणायाम करें तो वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है।
1: जी,
2: जैसे सुबह के समय अगर अपन 5 बजे करते हैं तो बहुत लाभदायक है, और इसको खुले वातावरण में, जैसे कि किसी मैदान में, खेल के मैदान में, नदी के किनारे या घर की छत पे,
1: अगर
2: जी बगीचे में, और अगर जो कोई ज्यादा बीमार आदमी है, स्थिति में नहीं है, जो ऊपर नहीं जा सकता, पार्क में नहीं जा सकता, तो वो कमरे में भी कर सकता है, मगर कमरे में भी खुला वातावरण होना चाहिए, जैसे खिड़कियां खुली हों, दरवाजे खुले हों, शुद्ध हवा आ रही हो, वहाँ पे भी अपन योग प्राणायाम कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि एक तो इसको कब करना चाहिए, इसके लिए प्रातःकाल का समय,
2: प्रातःकाल
1: का समय, शाम में भी कर सकते
2: हैं। शाम में अपन कर सकते हैं, मगर खाना खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद।
1: जी,
2: खाना खाने के पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद।
1: हाँ, यदि खाना खा लिया है तो 2 घंटे
2: दो
1: तक
2: घंटे
1: नहीं
2: तक नहीं करना चाहिए, उसके बाद अपन कर सकते हैं।
1: जी जी, ये तो हुई कि कब करना चाहिए ये बात, और आपने बताया कहाँ करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो खुला वातावरण,
2: ये खुला वातावरण
1: और
2: शांत वातावरण हो, खुला वातावरण हो।
1: जी, इसके बाद हम चलते हैं इस प्रश्न की ओर कि कुछ बातें होती हैं जो योग करते समय ध्यान देना आवश्यक होता है।
2: जी,
1: तो जैसे हमारी बहनें, उन्होंने अपनी जगह का भी चुनाव कर लिया, समय भी उन्होंने निर्धारित कर लिया, अब वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका भी ध्यान रखें योग करने से पहले।
2: जी, सबसे पहले तो सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद,
1: जी,
2: अपन अगर जो बहनें स्नान करना चाहती हैं तो वो योग के पहले स्नान कर लें। अगर वो योग के पहले स्नान नहीं कर सकती हैं और अगर बाद में करती हैं तो एकदम ठंडे पानी से ना नहाएं।
1: जी,
2: अगर उनको बहुत जल्दी नहाना है तो उसको गुनगुने पानी से नहाएं, और नहीं तो योग के कम 1 घंटे बाद स्नान करना चाहिए उन लोगों को। इस चीज का तो ज्यादातर ध्यान रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई, तुरंत ऐसा नहीं कि हमने
2: योग करा है कि और तुरंत नहा लिया,
1: ये गलत
2: जी,
1: होगा
2: जी,
1: इसका विपरीत प्रभाव
2: जाएगा शरीर पे।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, तो इस बात का हमारी बहनें ध्यान रखें जो योग कर रही हैं, उन्होंने समय सही चुन लिया है, जगह सही चुन ली है, लेकिन जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं वो,
2: और इसमें सांसों का ध्यान, जैसे योग करते हैं कई बहनों को सांसों का योग तो करती हैं मगर उनको सांसों का ध्यान नहीं रहता कि योग करते समय कब लेना है और कब छोड़ना है। अगर इसका विशेष ध्यान अगर महिलाएं रखें तो मतलब जैसे कि अपन को जो कुछ परसेंट इससे 100% आराम योग में मिलेगा।
1: जी,
2: अगर
1: जी,
2: सांस कब लेना है कब छोड़ना है इसका विशेष ध्यान रखें,
1: उचित श्वास प्रश्वास होना चाहिए, तभी उन्हें उसका शत प्रतिशत
2: लाभ मिलेगा।
1: बहुत अच्छी आपने बात बताई। कुछ विशेष बीमारियां हमारी बहनें जैसे कि कमर दर्द से पीड़ित होती हैं, या सिर झुका कर काम करने से गर्दन में तकलीफ होती है, सर्वाइकल की कोई समस्या आती है, तो इसके लिए कोई खास प्राणायाम हो जो आप हमारी बहनों को बताना चाहें।
2: कमर दर्द के लिए तो बहनें खासकर ध्यान रखें कि जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है तो वो सबसे पहले योग करते समय नीचे ना झुके, आगे की तरफ, पीछे झुक सकती है, आगे ना झुके, इसका विशेष ध्यान रखें। और इसमें कमर दर्द के लिए सबसे पहले इसका योग है मरकट आसन, दूसरा है कटी उत्तपादासन, कंधार आसन, पवन मुक्तासन और साइकिलिंग, ये कमर दर्द वाले इसकी महिलाएं ज्यादा ध्यान रखें, और मरकट आसन इसका विशेष योग है कमर दर्द के लिए।
1: जी जी
2: जी, और जैसे गर्दन के लिए है, जिनकी गर्दन में हल्का फुल्का दर्द है तो वो ग्रीवाचालन करें, और जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है तो प्रेशर की क्रिया, इसका विशेष ध्यान रखें, और जिनके सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी आगे ना झुके, आगे की ओर ना झुके, और गर्दन को झटके के साथ इधर उधर ना करें,
1: बहुत आराम से
2: जी, बहुत आराम से, अगर ग्रीवा चालन भी कर रही है तो बहुत आराम से करें, अगर ज्यादा स्पीड में करेंगी तो चक्कर आ सकता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बहुत आराम से और धीरे धीरे
2: धीरे धीरे करें।
1: और एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि योग करते समय जो वस्त्र हैं उनका भी ध्यान रखना,
2: उनको वस्त्र को बिल्कुल ढीला पहनना,
1: ढीले वस्त्र
2: जी,
1: जी जी
2: टाइट वस्त्रों में ना करें, बिल्कुल लूज वस्त्र पहने
1: और जिनमें उन्हें कंफर्ट हो,
2: कंफर्ट हो जिसमें
1: आराम से इसमें योग कर सकें। इसके बाद कुछ और, जैसे हमारी कुछ बहनें मोटापा जो एक आम समस्या हो गया आज के समय में, तो उसके लिए कौन से ऐसे प्राणायाम हैं, कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिन्हें वे करके अपने मोटापे से निजात पा सकती हैं, और व्यायाम कितने समय तक करना चाहिए, आधा घंटे, 30 मिनट या 1 घंटे, ये भी आप कृपया हमारी बहनों को बताएं।
2: जैसे मोटापे के लिए आजकल आम लेडीज़ों में मोटापा आता जा रहा है, तो इसका तो एक है कि जैसे कि सबसे पहले जब अपन योग के लिए अगर कहीं पार्क में जा रहे हैं तो घर से जब निकलेंगे तो अच्छी स्पीड में जाएं,
1: जी
2: तेज चाल में जाएं, और वहाँ पे मोटापे के लिए एक तो अपन सबसे पहले प्राणायाम भी करेंगे, और दूसरा इसका है मोटापे के लिए त्रिकोण आसन, जो मोटापे के लिए खास कर रहता, त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है और पादव्रत है, पादहस्तासन है, मोटापे के लिए
1: इनका अभ्यास
2: और कम से कम जो भी आसन करें, जैसे त्रिकोणासन है, हर आसन 5-5 मिनट तो करें, रोक के रखें उसको और करें।
1: जी जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, ऐसा नहीं कि आसन लगाया और
2: तुरंत हटा दिया, दूसरे
1: आसन की जो
2: कम से कम 2 से 3 मिनट एक आसन को रोक के रखें और फिर पहले स्लो करें, फिर वही स्लो करते करते उस चीज को त्रिकोण आसन है उसको फास्ट करें।
1: जी जी अच्छा, हमने आसनों की बात की, हमने प्राणायाम की बात की, सूक्ष्म व्यायाम की बात की, योग का एक महत्वपूर्ण अंग है वो आहार भी होता है
2: जी,
1: क्योंकि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार है ना, धारणा ध्यान समाधि, तब हम समाधि की ओर जाते हैं, तो प्रत्याहार यानी हमारा आहार विहार भोजन, उस पर भी हमारी बहनों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे यदि मोटापा की बात हम कर रहे हैं,
2: हाँ मोटापे
1: तो उनको भोजन में किस तरह का भोजन लें, ये भी आप हमारी बहनों को
2: जी
1: बताएं।
2: कम से कम जैसे कि दोपहर में है तो अगर भोजन की जैसे ज्यादा इच्छा है तो अपन एक रोटी और सैलेड दोपहर के समय वो ले सकते हैं, और शाम को भी अगर सोचे कि हल्का भोजन
1: जी,
2: शाम के समय हल्का भोजन लें और दोपहर में सैलेड ज्यादा से ज्यादा लें, और योग करने के तुरंत बाद भोजन ना करें
1: जी जी,
2: और जो महिलाएं चाय पीती हैं उसको भी अवॉइड करें।
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने अनीता जी, हमने सभी बातें आपसे जान ली कि हमारी बहनें योग किस तरह से करें, कब करें, कहाँ करें, किस तरह का वस्त्र विन्यास हो। हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो बहनें गर्भवती हैं और गर्भावस्था के दौरान वे योग क्रियाएँ करती हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन से उन्हें प्राणायाम या आसन करने हैं।
2: जी गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम तो उनके लिए आवश्यक है
1: जी,
2: करना चाहिए, अनुलोम विलोम में भस्त्रिका है, भ्रामरी है, ये तो वो अधिक से अधिक करें, और संग में गर्भवती महिलाओं के लिए चक्की चालन वो अधिक से अधिक करें
1: जी, बहुत अच्छा आसन
2: जी
1: है। जी
2: और प्राणायाम
1: अभ्यास, चक्की वाला अभ्यास जो है वो उनके लिए लाभदायक
2: है।
1: और साथ ही साथ हमारी बहनें मासिक धर्म के दौर से गुजरती हैं तो उस समय वे योग कर सकती हैं अथवा वर्जित है, यह भी बताएं।
2: जी उस समय उनको ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, जैसे कपालभाति है वो नहीं करना चाहिए, एक बार अनुलोम विलोम बैठ के कर सकती हैं, और संग में सूक्ष्म व्यायाम
1: जी जी
2: जी, हाथ के पैरों के बैठे बैठे
1: जी जी, बहुत अच्छी
2: बाकी सारे अवॉइड करना चाहिए उनको, खड़े होने वाले, लेटने वाले
1: जी जी जी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि हमारी बहनें किस तरह से गर्भावस्था में भी करना चाहें तो वे कौन से प्राणायाम कर सकती हैं, और साथ ही अपने महामारी के दौरान भी वे योग कर सकती हैं, लेकिन उसमें उन्हें प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम
2: में भस्त्रिका है, भ्रामरी है, उद्गीत है,
1: उद्गीत भी कर सकती हैं और सूक्ष्म क्रियाएं भी
2: कर सकती हैं।
1: तो अनीता जी आज आप हमारे बहनों के लिए इतनी अच्छी जानकारी लेकर हमारे बीच उपस्थित हुई और बहुत विस्तार से आपने बताया कि हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है, किस तरह बहनें अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्वास्थ्य को बचाकर रख सकती हैं और एक अच्छी जीवन शैली अपना सकती हैं। आपने हमारी बहनों के साथ इतने अच्छे विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहनों, अभी आप सुन रही थी एक भेंट वार्ता जिसका विषय था दैनिक जीवन में योग का महत्व, जिसके अंतर्गत श्रीमती अनीता मिश्रा से बातचीत कर रही थी हमारी सखी श्रीमती हेमलता चौधरी। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहनों गर्मी का मौसम चल रहा है, साथ ही बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चों की अक्सर ये आदत होती है कि उनकी गर्मी की छुट्टियां लग गईं, अब बच्चे घर में कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों का आनंद खेल कूद कर लेते हैं, हॉलीडे होमवर्क मिला होता है उसे भी 10-15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद समर कोर्स भी 15-20 दिन तक ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी घर बैठे अपनी मम्मा से कहते हैं कि हम घर पर खाली बैठकर क्या करें। कहते हैं बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। कुछ बच्चे फैमिली टूर पर भी हो आते हैं, इसके बाद भी उनकी गर्मी की छुट्टियां शेष रहती हैं और उनका शैतानी दिमाग इधर उधर घूमता है। तो क्यों ना हम बच्चों को अपने साथ छिटपुट घर के काम में शामिल करें। यदि हमने उन्हें घर में बिजी नहीं रखा तो ये खाली बैठे बैठे तोड़ फोड़ मचाते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। आइए हम आपको बताते हैं बच्चों को हम घर पर किस प्रकार अपने साथ बिजी रखें। सबसे पहले उन्हें खिलौने, किताबें, खुद संभालने की आदत डालें। रसोई में छोटी मोटी मदद जैसे सलाद बनाना, सब्जियां धोना, रोटियों पर घी लगाना, इसके अलावा घर में पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना, पौधों को पानी देना, बगीचे में से व पौधों पर से सूखे पत्ते हटाना जिससे उनका प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़े। इसके अलावा अपनी पढ़ाई के कमरे को साफ सुथरा रखना जिससे स्वच्छता के प्रति उनके मन में जागरूकता हो, साथ ही उनमें आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके अलावा क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई जैसी गतिविधियां छुट्टियों के दिनों में हमें बच्चों से करवाते रहना चाहिए। चलिए हम अपने विषय को थोड़ा अलग करते हैं और आपको जानकारी देते हैं विधवा दिवस पर। मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर की विधवाओं द्वारा सामना किया जाने वाला व्यवहार, जैसे कुछ लोग इसे सामाजिक कलंक मानते हैं और एक विधवा महिला को यह देखकर कि उसके ऊपर से पति का साया हट गया है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसके साथ अन्याय करते हैं, या वह महिला गरीब है तो उसे समाज में उपेक्षित मानते हैं, यानी वह समाज में अन्य लोगों के साथ रहने लायक नहीं है। इन्हीं सब अन्यायों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए व विधवाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, जिससे विधवाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सके, समाज उन्हें उपेक्षित न समझे, उनके साथ दुर्व्यवहार न करे, समय समय पर उनकी जैसा संभव हो सके मदद करे। बहनों अब हम आपको जानकारी देते हैं, सेवा के 12 वर्षों में भारत में महिला केंद्रित कल्याण से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास का एक नया युग शुरू हुआ है उसके बारे में। इन 12 वर्षों में महिलाओं को भारत की विकास यात्रा का नेतृत्वकर्ता बनाते हुए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के अभूतपूर्व कार्य किए गए। महिला उद्यमियों को लाखों करोड़ों के ऋण दिए गए। लखपति दीदी के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG के कनेक्शन दिए गए। PM आवास योजना के तहत करोड़ों पक्के घरों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया। उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में भारी प्रगति हुई। ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन तकनीक से जुड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल शुरू की गई। विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी। इन सभी योजनाओं के माध्यम से आज देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उभरी है। बहनों ये थी जानकारी सेवा के 12 वर्षों में महिला केंद्रित कल्याण से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास

मैंने वैसे तो तेज गर्मी में शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले हम हर तरह के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या लस्सी, सत्तू का शरबत, गन्ने का रस, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, पुदीना वगैरह वगैरह, जिनके माध्यम से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। लेकिन बहनों, क्या आपको पता है कि इस तपती गर्मी से आपके शरीर को सबसे अधिक ठंडक कौन सा पेय पदार्थ प्रदान करता है? जी हाँ बहनों, हम आपको बताते हैं, उस पेय का नाम बेलपत्र का शरबत। बेलपत्र एक ऐसा फल है जो हमें गर्मी में सर्वाधिक शीतलता प्रदान करता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बेलपत्र के फल से शरबत बनाने की विधि। बेलपत्र का फल गर्मियों में हमारे लीवर को भी ठंडा रखता है एवं शारीरिक शक्ति को भी प्रदान करता है। तो अब नोट कर लीजिए बेलपत्र का शरबत बनाने की विधि। यह विधि अत्यंत सरल है। सबसे पहले हम एक बेलपत्र का पका फल लेंगे और उसे फोड़कर छिलका हटाकर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक नॉर्मल पानी में भिगोकर रख देंगे। इसके पश्चात इसे साफ हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और इसके बाद अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी, शक्कर और चाहे तो छोटी इलायची का पानी मिलाकर भी पी सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज वगैरह है तो आप इसमें शक्कर ना मिलाएं, क्योंकि यह नॉर्मली मीठा होता है और बिना शक्कर के ही आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि शक्कर मिलाने से ये ठंडक प्रदान नहीं करता बल्कि इसकी तासीर ही ठंडी होती है। तो बहनों, कैसी लिए आपको बेल का शरबत बनाने की विधि? इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। घड़ी की सुई समाप्ति की ओर इशारा दे रही है और इसके साथ ही डॉक्टर संगीता भास्कर को आज का कार्यक्रम

0: अभी आप सुन रहे थे बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 21 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थियों के लिए 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज सम्पन्न हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6 बजे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। लोक संगीत में सुनवा रहे हैं विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। पहले सुनते हैं विकास गीत।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खबर।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ. केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ. हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर। साथियों, क्रम जीवनालोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। और साथियों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय विद्यालयों सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है पर चर्चा करने का। साथियों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज के आधुनिक युग में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। उद्योगों, कृषि, परिवहन, शिक्षा और घरेलू कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भरता है। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जाता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथियों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। बिजली से घरों में प्रकाश होता है, मशीनें चलती हैं और उद्योगों का संचालन होता है। यदि ऊर्जा उपलब्ध न हो तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन करने में भारी लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नए बिजली संयंत्र स्थापित करना, ईंधन जुटाना और वितरण व्यवस्था विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। यदि हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम करें तो उतनी ही ऊर्जा बचाई जा सकती है जितनी नई ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संरक्षण से आर्थिक बचत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे कम बिजली खर्च देते हैं, दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए, वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई काम करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। विद्यालय और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बचत करके हम न केवल धन और संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करे और संरक्षण के उपाय अपनाए। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, एक सार्थक और दूरदर्शी विचार है जो हमें उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय योग का जीवन में महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर।
1: योग विज्ञान का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल योग कहलाता है। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत की युज धातु के धज प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। योग केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों का आधार स्तंभ रहा है। यह एक प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य शरीर, मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय कर उत्तम चरित्र का निर्माण और आदर्श समाज की रचना करना है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न एवं बुद्धि स्थिर रहती है। सारांश में कहें तो योग का अर्थ शरीर और मन की संतुलित अवस्था के साथ सात्विक आहार का सेवन है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं मन के साथ ही चेतना भी शुद्ध और सबल होती है। योग अभ्यास से शरीर के सभी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का आधार मेरुदंड और मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास की चर्चा है, ये योग द्वारा ही संभव है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या का विकास करके मानवता के समक्ष इस विषय में बहुत ही सरल व सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन के चरम व परम लक्ष्य को सहजी प्राप्त कर सकता है। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है, यह जीवन जीने का एक प्रभावी व्यवहारिक विज्ञान है। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास, सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण। योग जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान, जीवन जीने की कला अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य में निहित सृजनात्मक शक्तियों का जागरण एवं रूपांतरण ही योग है। मन को शांत एवं नियंत्रित करने की कुशल विद्या एवं दिव्यता को प्राप्त करना ही योग कहलाता है। परम सत्य को जानना एवं परम सत्य में रमण करना ही योग है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना ही योग है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के शब्दों में योग उस साधन प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है और जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। योग का लक्ष्य एक ही है, नर से नारायण बनाना। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह जितना भी एकाग्र होता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सभी वैज्ञानिक खोजों का रहस्य है जो सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। जीवन में योग की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में योग उच्च जीवन प्राप्त करने की विद्या है जो व्यवहारिक जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। सर्वोच्च स्तर पर जाकर यही मोक्ष का कारण बनती है। इसका आरंभ मन के नियंत्रण से होता है। जीवन में सभी स्थूल कर्म शरीर से ही होते हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मन है। जैसे मन में विचार होते हैं, वैसे ही कर्म शरीर द्वारा होते हैं। इसलिए शरीर द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्मों के लिए मन ही जिम्मेदार है। इसलिए योग साधना का आरंभ मन के नियंत्रण से ही किया जाता है। योग के कई मार्ग हैं, जिनमें राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाद योग, तंत्र योग आदि। इनमें से किसी की भी साधना की जाए, सभी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इनके लिए विभिन्न ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा कई योगी इनकी साधना भी करवाते हैं। ज्ञान साधना के लिए योग वशिष्ठ पूर्ण योग ग्रंथ है तथा शंकराचार्य इसके पूर्ण उपासक थे। व्यवहारिक जीवन में गीता का योग सर्वाधिक उपयोगी है। इसके 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। कोई भी साधक अपनी रुचि के अनुसार किसी की भी उपासना कर ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। शरीर में आत्मा एक कारण तत्व है जो सभी क्रियाओं का कारण है, किंतु इसकी सभी क्रियाएं मन से ही होती हैं। इसलिए ये मन ही करता है। संसार की अनुभूति भी मन को होती है। सुख दुख का अनुभव, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि जितने भी दुर्गुण हैं, सभी मन की ही उपज है। इसी प्रकार प्रेम, दया, करुणा, सेवा आदि जितने भी भाव हैं, वे भी सभी मन की ही उपज है। अतः मन पर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, वरना समाज व्यवस्था रह ही नहीं सकती। ये मन ही संसार है। संसार के सभी बंधन मन के ही कारण हैं तथा मन से ही मुक्त होना मुक्ति है। आत्मा को जानने वाला भी मन ही है, जो आत्मा से भिन्न ही है। आत्मा ज्ञेय है तथा मन ही उसका ज्ञाता है। जिसे ज्ञान होता है, यदि मन ना रहे तो इसकी अनुभूति भी संभव नहीं है। अनुभूति के बाद भी उसकी व्याख्या मन के द्वारा ही की जा सकती है। अतः मन की ही सर्वाधिक भूमिका है। यदि मन आत्मा में विलीन हो जाए तो उसकी व्याख्या कौन करेगा। जो मन सांसारिक विषयों से ही भरा है, वह उस चैतन्य को जान ही नहीं सकता। मन को सबसे पहले सांसारिक विषयों से मुक्त करना पड़ेगा, तभी वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। मन को इन विषयों से खाली करना प्रथम चरण है। योग द्वारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर विकास। एक ही समय में इन सभी स्तरों पर उन्नति केवल योगिक क्रियाओं के माध्यम से संभव है। शारीरिक विकास, योगिक क्रियाएं जैसे सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि जो जीवन के एक एक अंग पर क्रिया कर उन्हें उन्नत करती है। मानसिक विकास, मन को एकाग्र कर सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाता है, जिससे आत्म विकास, साहस, धैर्य, उत्साह, संयम आदि गुण विकसित होते हैं। ध्यान व प्राणायाम की क्रियाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में परम सहायक हैं। भावनात्मक दृष्टि से भी भक्ति योग भावनाओं को परिपक्व बनाने में सबसे सशक्त माध्यम है। बौद्धिक विकास के लिए मन की एकाग्रता अपरिहार्य है। जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स शिथिल होकर स्वतः ही उन्नत हो जाते हैं, अतः बुद्धि तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। सामाजिक विकास भी योग के माध्यम से होता है। मन की शांत व एकाग्र अवस्था व स्वतः ही समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है। ईश्वर में अटूट श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण आध्यात्मिक विकास की नींव है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मन को शांत व शून्यता के प्रति अग्रसर करता है। आध्यात्मिक विकास जीवन की सार्थकता के लिए परम आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को रोगों के होने का कारण माना जाता है, और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारना अर्थात जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक के उपचार कर रोगों को ठीक किया जाता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, त्रिदोष और सप्त धातु का असंतुलित होना रोग उत्पत्ति का कारण माना जाता है। औषधियों के द्वारा वात, पित्त, कफ को संतुलित कर रोग निवृत्ति की जाती है, परंतु योग चिकित्सा के अनुसार विजातीय द्रव्य का शरीर में रुक जाना अर्थात किसी भी अंग को प्रभावित करना रोग का कारण बनता है। विजातीय द्रव्य के वातावरण में जीवाणु के उत्पन्न होने से रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यही रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग में विजातीय द्रव्य द्वारा बना वह वातावरण है जिससे हानिकारक जीवाणु पनपते हैं और लक्षणों के रूप में रोग उत्पन्न होते हैं। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि रोगों का कारण जीवाणु नहीं बल्कि वह दूषित पदार्थ है जो शरीर में रुक जाते हैं। योग चिकित्सा द्वारा शरीर के इन विजातीय द्रव्यों टॉक्सिन को शरीर से दूर कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु पनपने का वातावरण ही समाप्त ही कर दिया जाता है, जिससे रोग का मूल कारण समाप्त हो जाता है। योग चिकित्सा द्वारा रोग शरीर के हर स्तर पर शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर से दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाती है, तथा सभी स्तरों की पूर्ण क्षमता को उभार कर संतुलित विकास के लिए अग्रसर किया जाता है। स्वास्थ्य ही शरीर की धरोहर है। ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है, ये बड़े पुण्य और अपने अच्छे कर्मों का वरदान है कि आप अपने आनंद में जीवन को तनाव व रोग युक्त न बनाएं। इसलिए लय प्रतिज्ञा हम करेंगे योग, रहेंगे निरोग, रहेंगे निरोग।
0: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार थे रघुवीर पाराशर। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है पर चर्चा करने का। साथियों, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बनाती है। विद्यालयी शिक्षा के बाद महाविद्यालय का जीवन प्रारंभ होता है, जो विद्यार्थियों के भविष्य और करियर की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका महाविद्यालय आपके करियर का प्रथम चरण है। दोस्तों, महाविद्यालय शिक्षा का वह स्तर है जहां विद्यार्थी अपने रुचि और लक्ष्य के अनुसार विषयों का चयन करते हैं। यहां उन्हें केवल पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की सामान्य शिक्षा दी जाती है, जबकि महाविद्यालय में उन्हें विशेष विषयों का गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यही अध्ययन आगे चलकर उनके कैरियर की नींव बनाता है। साथियों, महाविद्यालय विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है और अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर भी प्राप्त होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नेतृत्व, समय प्रबंधन, टीम वर्क, संचार कौशल और समस्या समाधान जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने का अवसर भी मिलता है। ये गुण किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कई महाविद्यालय विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। साथियों, महाविद्यालय केवल शैक्षणिक विकास तक सीमित नहीं होता, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का भी केंद्र है। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सामाजिक गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। साथियों, महाविद्यालय जीवन का सही उपयोग करना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। उन्हें समय का सदुपयोग करते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नई नई जानकारियां प्राप्त करना और अपने कौशल को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, विद्यार्थियों को महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने करियर को सफल बना सकते हैं।

महाविद्यालय विद्यार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह उन्हें करियर की मजबूत नींव तैयार कर देता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
4: डीडी डायरेक्ट,
3: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
4: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
4: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
3: आज ही करें कनेक्ट
4: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: खुशखबरी
8: है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोता, उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत विशाल ददलानी की आवाज़ में है। धूमधाम फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है सिद्धांत कौशल ने। संगीतकार हैं क्लिंटो सेरेजो और बैंक।

कार्यक्रम का आखिरी गीत धुरंधर फिल्म से। आवाजें हैं शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और शुभदीप की। गीत लिखा है इरशाद कामिल और साहिर लुधियानवी ने। संगीतकार हैं शाश्वत सचदेव और रोशन।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना,

लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: हस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने।
3: मध्य प्रदेश

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा,

0: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से एक से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को पीएचडी सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि
2: रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब पांच पांच स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है।
1: कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार ब्राह्मणी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि युद्धपोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज FIH महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर ऑडियो मासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। ये प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल छाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडव द्वारा भील जनजातीय भगोरिया नृत्य एवं घुमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कांवड़ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन के काजें साधना की राम राम। भैया देखो, अपन आगे बात करें तो अपन देख ही रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। तो अब भैया जाके लाने अपन को क्या करने हैं कि पानी की बचत करवे को अपन को पूरो व्यवस्था कर लेना चाहिए। जैसे भैया जब बारिश होए तो जो पानी फालतू ना चलो जाए, कैसे कि भैया जो बरसात को पानी जो होते है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते है। तो जाके लाने अपने सबसे पहले करने हैं भैया कि अपने खेत में अपन मेड़बंदी जरूर कर लें। मेड़बंदी कर लेंगे तो जब खूब बारिश होगी, तेज बारिश होगी, तो वो पानी अपने खेत में रुक जाएगा। और जैसे भैया कहते हैं कि खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, सबसे अच्छा काम हो जाएगा। फिर भैया बाकी बात अपन दूसरों काम जो कर सकते हैं कि अपने खेत के पास ढलान के हिसाब से भैया तालाब को निर्माण कर लेवे, जैसे का होएगा जो बरसात को पानी है वो सब इकट्ठा हो जाएगा और जब अपन को आगे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वह पानी को अपन उपयोग कर लेंगे। कैसे कि भैया पानी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बाको महत्व तो अपन को पहचानना चाहिए। पानी को भैया संचय कर वो बहुत ज़रूरी है। और अपन आगे बात करेंगे भैया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। भैया जो योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और जो एक खाद्य योजना है, जय योजना के माध्यम से भैया लगभग 80 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान करो जाते हैं, जैसे भैया बे लोगों को पेट भर सके। जो लोग भैया परेशान हैं, जो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, बिनके लाने भैया जो योजना शुरू करी गई है। जय योजना के लाने भैया गरीबी रेखा में जो लोग आवत हैं, बिनके पास गरीबी रेखा को कार्ड हो वो जरूरी है और राशन कार्ड हो वो भी जरूरी है, तभी भैया जय योजना को अपन लाभ ले सकते हैं। और जो योजना को भैया मुख्य उद्देश्य जो ही है कि कोनो व्यक्ति भैया भूखे पेट ना सोए। भैया जो लोग गरीब हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अगर भैया बिनको पेट खाली रहेगा तो जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सरकार की भैया जो ही मंशा है कि हर व्यक्ति को पेट भरो होना चाहिए और वो जब रात में सोए तो वो भूखो ना सोए, जय के लाने भैया जो योजना चलाई गई है। जब भैया कोरोना के टाइम सब कछु बंद है तो तब जो योजना चलाई गई थी, जब व्यक्ति कहाँ से खाए कहाँ से कमाए, तब भैया सरकार द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। और भैया अब बरसात भी आवे बारी है तो ऐसे में भैया अपन को साफ सफाई पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसे कि भैया जा टाइम का होते हैं कि मक्खी मच्छर ज़्यादा फैल जाते हैं, तो अपने घर के बाहर भैया नालों छोटी नालियों की अपन सफाई करवा ले। जैसे का होएगा कि अगर पानी ज़्यादा बारिश होगी तो पानी भर जाएगा और अपने घर के बाहर गंदगी रहेगी तो मक्खी मच्छर ज़रूर पनपेंगे। और भैया मक्खी मच्छर से बचाव के लाने अपन को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मक्खी जो होते हैं भैया वो बीमारी फैलावे में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, तो बाकी बचाव के लाने अपन को क्या करने हैं कि अपनों जो खाना है अपनों पानी है वो सब अपन को ढककर रखने हैं। और भैया जब अपन ढककर रखेंगे तो इन पर मक्खी नहीं बैठ पाएंगी, तो अपनों खाना भैया सुरक्षित रहेगा। तो अपन को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समय समय पर भैया हाथ धोते रहने चाहिए। हाथ धोकर ही अपन को भोजन करना चाहिए और भोजन बनाना भी चाहिए। अब भैया अपन आगे बात करेंगे तो आज है भैया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और भैया हम यही कहेंगे कि करें योग और रहें निरोग, मतलब भैया अगर अपन अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो अपन निश्चित तौर पर ही निरोग रहेंगे। तो योग को अपनाएं और अपने जीवन को भैया बेहतर बनाएं, जो ही हम भैया चाहते हैं। योग भैया अपने शरीर के लाने बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। कहावत है भैया कि करें योग और रहें निरोग, मतलब भैया जो ही है कि अगर हम योग करेंगे तो बीमारी हमारे आसपास भी नहीं भटकेंगी, हम भैया स्वस्थ रहेंगे। और जीवन को सबसे बड़ा पहला सुख जो ही है कि स्वस्थ काया, अगर हम स्वस्थ हैं भैया तो हम जीवन को हर सुख ले सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ हैं तो अपना जीवन बिल्कुल बेकार है, अस्वस्थ होके भैया हम परेशान ही होते हैं। तो अगर अपन को स्वस्थ रहने हैं तो योग और व्यायाम दोनों को भैया अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए।
योग से अपनो शरीर स्वस्थ होत है और मन शांत होत है। जब अपनो मन शांत रहेगो तो अपने शरीर में सभी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। मन को भैया शांत रहे वो बहुत ज़रूरी है, और मन को शांत हम जब ही कर सकते हैं जब हम नियमित रूप से योग और व्यायाम करेंगे। भैया हम सोचते हैं कि हम तो पूरे दिन काम कर रहे हैं, खेतन में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। महिलाएं सोचते हैं कि हम अपने घर को पूरा काम कर रहे हैं तो अपनों तो व्यायाम हो जाते हैं, मगर भैया ऐसो नहीं है। ये सब बातें अलग हैं। व्यायाम और योग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और भैया इनकी शैली, इनका तरीका ही अलग होता है। जैसे अपने शरीर को भैया एक एक अंग पूरे अच्छे से अपनों काम करते हैं, और अपने शरीर में जो है खून को जो भैया चलन है, खून की जो चाल है वो हर तरह से सही रहते हैं। तो अपन को भैया अपने जीवन में व्यायाम जरूर करना चाहिए। हमें भैया अपने शरीर, अगर जब हम व्यायाम करते हैं तो अपना शरीर जो है वो सुडोल बन जाते हैं और अपने शरीर में फुर्ती रहते हैं। जब हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, तो अपना शरीर भैया थको थको सो रहते हैं। हमें अगर अपने शरीर में फुर्ती लाने हैं, शरीर को स्वस्थ रखने हैं, तो व्यायाम और योग जरूर करना चाहिए, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और हम भैया बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो भैया आज से अपन को, जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि अपन सब भैया योग करेंगे और निरोग भी रहेंगे। अब भैया अपन आगे बातचीत तो और करेंगे, पहले सुन लें अपन बीना शर्मा को गाओ बहुत जो बढ़िया सुलोगी।

0: तो भैया अभी अपन सुन रहे थे जो बहुत ही बढ़िया लोकगीत जय गाओ हो तो बीना शर्मा और बिनकी सखियन ने। अब भैया अपन आगे बात करेंगे बहुत ही खास विषय पर, वो है भैया जल संरक्षण के बारे में। हमें भैया जल को संरक्षण जरूर करना चाहिए। भैया ये कहावत तो अपन ने सबने सुनी है कि बिन पानी सब सून, तो पानी के बिना भैया अपनो जीवन संभव ही नहीं है। तो हमें जल की बहुत आवश्यकता होती है और जाकिला ने अपन को जल को संरक्षण करना चाहिए। चाहे तो भैया पेड़ पौधे होए, मानव जीव जंतु सबको ही भैया पानी की आवश्यकता होती है, तो जल को संरक्षण बहुत जरूरी है। और भैया जल संरक्षण के लाने हमें आधुनिक विधियों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे भैया अपन सिंचाई में पुरानी पद्धति जो है बहाव पद्धति को अपन अगर प्रयोग करेंगे तो पानी भैया इतः बितः फैल जाता है और जो पौधा पे पड़ना चाहिए उतना पानी नहीं जाता है और नो पानी व्यर्थ ही चलो जाता है। तो बहाव पद्धति में पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ फैल जाता है और जब पानी इतः बितः फैलत है तो वासे का होते भैया कि खरपतवार भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और खरपतवार जो है भैया अपनी फसल के लाने खतरनाक साबित होते हैं। जो भैया कहा है कि अपनी फसल को कमज़ोर बना देते हैं और कमज़ोर फसल से भैया अच्छा उत्पादन अपन नहीं ले पाते हैं और अपन को नुकसान हो जाते हैं। तो जई के लाने भैया अपन को हमेशा सिंचाई के लाने नई आधुनिक विधियों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे भैया टपक विधि सिंचाई, जहाँ में क्या होता है भैया कि बूंद बूंद करके अपनी फसल पर पानी गिरत है, तो जहाँ से 60 से 70% तक अपन पानी की बचत कर सकते हैं। और जब पानी अपनों सीधी फसल पर गिरत है, इतः बितः बिल्कुल नहीं फैलत है, तो जैसे खरपतवार भी बहुत कम पैदा होते हैं और अपनी फसल स्वस्थ और अच्छी होती है। तो भैया जो बहुत ही अच्छी विधि है। और भैया एक और अच्छी विधि है स्प्रिंकल विधि, जय भैया अपन फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, जहाँ में भैया फसल पर फव्वारे के माध्यम से पानी दौ जाते हैं जो कि भैया बारिश की तरह अपनी फसल पर परत है और फसल जैसे बहुत ही अच्छी हो जाते हैं। तो जो भैया बहुत अच्छी विधि है, जैसे भी अपने पानी की अपन अच्छी बचत कर सकते हैं। तो कहवे को भैया मतलब ये है कि अपन को पुरानी विधियों को प्रयोग नहीं करने हैं, अपन को सिंचाई के लाने आधुनिक विधियों को प्रयोग करने हैं, जैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा भैया पानी को संरक्षण कर सकें। और भैया ऐसी बहुत सी जगह हैं भैया दूर दूर तक लोग शुद्ध पानी लेवे के लाने पैदल चलत हैं, तो बिन लोगों से पूछो भैया कि पानी बन के लाना कितना अनमोल है। और अपन जब अपने पास पर्याप्त तो पानी होता है तो अपन वह पानी को व्यर्थ में ही फैलाते हैं। तो भैया हमें पानी को व्यर्थ बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। जब भी भैया अपन को अपने पशु नहवाने हैं तो लेजम लगा के ना नहवाएं, बासे का होता है कि पानी व्यर्थ फैलत है। अपन को भैया डिब्बा बाल्टी से अपने पशुओं को नहवाना चाहिए। तो ऐसे अपन छोटे छोटे काम में पानी को बचत कर सकते हैं। जैसे भैया अपन सब्जी भाजी धोते हैं तो बाको पानी अपन अपनी क्यारियन में डाल देवें, जैसे पानी की बचत होए। और भैया अपन को अपने छोटे बच्चन को भी समझाना चाहिए, अगर बिने अपन बचपन से ही पानी को महत्व समझाएंगे, पानी की बचत करवो सिखाएंगे, तो बड़े होकर वे पानी की बचत करेंगे। अगर हम इन्हें नहीं समझाएंगे तो वे अंधाधुंध पानी फैलाएंगे, जो अपने भैया अब भविष्य के लाने बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें पानी को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, जाके लाने अपन को नई नई विधियों को प्रयोग करना चाहिए। अब भैया अपन आगे तो और बताएंगे। सबसे पहले हम आप लोगों के लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, जाको विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, और जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे हैं श्री जितेंद्र कुमार जाटव जी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो सुनते हैं अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कृषि है, कृषि बहुत सारे नए आयाम नए समय में लेकर आ रही है। कृषि कार्य में समय समय पर तमाम तब्दीलियां यानी कि बदलाव आ रहा है और कृषि के कार्य को हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास भी हो रहे हैं। तो कृषि के कार्य में हम बदलते हुए स्वरूप कि अगर हम अलग अलग हिस्से करते हैं तो उसमें फल और सब्जियां भी आती हैं। फल और सब्जियों को अगर हम तुरंत यूज़ में ला लें तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए यानी कि उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे अगर बेचेंगे तो दाम कम मिलेंगे, यानी कि उसका हम कुछ दूसरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दूसरा उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री जितेंद्र कुमार जाटव जी हैं, आप उद्यान विस्तार अधिकारी हैं शिवपुरी में। जाटव साहब, सभी सुनने वालों के बीच में हम आपका स्वागत करते हैं और नमस्ते भी। जाटव साहब, ये बताएं कि जो विषय है फल सब्जियों का प्रसंस्करण, इसमें प्रसंस्करण शब्द क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग मतलब हिंदी नहीं आम जुबान में किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी, सर्वप्रथम सभी श्रोताओं एवं किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे देश में उद्यान की फसलों का उत्पादन लगभग पूरे वर्ल्ड में या विश्व में कहें तो दूसरे नंबर पर उत्पादन हमारे देश में होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है या उसका नुकसान होता है तो कई तरीके से हम देखते हैं कि फसल उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन हम ट्रांसपोर्ट में उसका लॉस का उठा पाते हैं कि 20 से लगभग 36% तक हमारा ट्रांसपोर्ट में सही समय पर उच्च क्वालिटी का सामग्री ट्रांसपोर्ट ना हो पाने के कारण उसका नुकसान या लॉस हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसंस्करण एक अच्छा, जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, ये प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग जो शब्द है ये एक शब्द नहीं, ये बहुत ही बड़ा एक विस्तृत इसको शब्द कहें कि इसका मतलब ये होता है कि हम इसके जो लॉसेस हैं हमारे और उसको कम किया जा सके इसमें बदल कर प्रसंस्करण करके, और दूसरा जब हमें हमारे यहाँ जब उत्पादन ज़्यादा होता है और किसान भाइयों को दाम कम मिलता है तो उसका हम दूसरे प्रोडक्ट में बदल कर ऑफ सीजन या जब हमारे पास उपलब्धता कम होती है उस समय हमारे पास इसकी भी वो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस समय हमें इसको बचा के रखें या किस तरीके से उसको परिवर्तित करके रखें उसी रूप में ताकि हमें आसानी से मिल सके। तो प्रसंस्करण या फलों सब्जियों का जो कुछ है कि उनके जो नुकसान होते हैं या ख़राब होने का जो कारण होता है तो फलों या सब्जियों में हम देखते हैं कि जो इनके एंजाइम होते हैं जो इनको छोटे माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अगर उनकी हम उनको निष्क्रिय कर दिया जाए जो उनकी क्रियाशील होती है उनको निष्क्रिय कर दिया जाए तो उसमें क्या है कि हमारी जो सब्जियां हैं फलें हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और
1: अपनी बातचीत बताया कि उसका अगर हम अंग्रेज़ी में कहें तो यूटिलाइजेशन बदल दिया जाए, उसका उपयोग बदल दिया जाए सब्जी का या फल का, तो वो हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और दाम भी जब ऑफ सीजन होगा तब उसका ज़्यादा मिलेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न ये आता है कि फल और सब्जियाँ, चूँकि बात शिवपुरी ज़िले की हो रही है, शिवपुरी ज़िले में जिन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है हम उसमें अगर फल और सब्जियों में लें तो फलों में कम है लेकिन सब्जियां ढेर मात्रा में हैं। टमाटर का एक बहुत बड़ा रकबा शिवपुरी में होता है, कद्दू का एक बड़ा रकबा होता है, इसके साथ साथ मटर का बहुत बड़ा रकबा होता है और बाकी फिर आप मेरे बताएंगे, तो इसका हम किस तरह से प्रसंस्करण कर सकते हैं और प्रसंस्करण करके क्या लाभ हमारा किसान ले सकते।
2: जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिवपुरी ज़िले में टमाटर का उत्पादन लगभग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रकबा है, लगभग 15,000 है, लेकिन प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग लगभग 1% भी या 1% भी इसका नहीं हो पा रहा है। तो इससे किसान भाइयों को एक कभी तो अच्छा दाम मिल जाता है, कभी बहुत कम दाम उनको मिलते हैं। तो हम टमाटर पे या फलों पे बात करें तो कुछ जैसे प्रोडक्ट हैं, हम फलों में देखते हैं कि एक फलों को आप जैम में बदल सकते हैं।
1: कौन कौन से फलों का शिवपुरी के लिए खासतौर पर जिक्र करना चाहेंगे, तो हम शिवपुरी के फलों की बात करें।
2: शिवपुरी में हम देखें तो अमरूद है, नींबू है, इनका हम देखें तो आप जूस बना के रख सकते हैं, अचार बना के रख सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, इन फसलों में हम फलों में कर सकते हैं। और जब सब्जियों बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विशेषकर टमाटर पे हम बात करते हैं तो टमाटर का उत्पादन पर्याप्त है शिवपुरी में। हमारे यहाँ के किसान भाई एवं युवा साथी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण में एक अच्छा रोजगार ढूंढ सकते हैं। उसमें टमाटर के कई प्रोडक्ट हैं, जैसे टमाटर प्यूरी बना सकते हैं, टमाटर सॉस बना सकते हैं, टमाटर केचप बना सकते हैं, टमाटर से संबंधित कई उत्पाद हमारे यहाँ किसान भाई एवं युवा साथी तैयार कर सकते हैं।
1: कोल्ड स्टोर में टमाटर को रख दें तो?
2: जी हाँ, कुछ समय के लिए अगर रखना हो तो कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है लेकिन ज़्यादा समय के लिए हम नहीं रख सकते।
1: जी, तो ये टमाटर का होगा कि आप उसका प्यूरी बनाएं या केचप बनाएं या उसका सॉस बनाएं या उसकी चटनी बनाकर कुछ फॉर्म में रखें। कौन सी दूसरी सब्जी है? कद्दू का मैंने जिक्र किया, आप बताएंगे कद्दू का वाकई में यहाँ रकबा है कि नहीं है, या कद्दू का प्रोडक्शन कम है, या दूसरी किसी सब्जी का हो तो सब्जी का पहले तो नाम, कौन कौन सी सब्जियाँ हैं?
2: हम कद्दू होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन टमाटर के बाद हम बात करें तो यहाँ प्याज की अच्छी खेती होती है शिवपुरी जिले में। तो प्याज का भी आज हम देखते हैं कि प्याज का उत्पादन काफ़ी है और प्याज हर सब्जी में और हर समय हर फैमिली हर परिवार को उसकी
1: जरूरत है, डिमांड है
2: उसका। बिल्कुल 12 महीने उसकी डिमांड या मांग रहती है। तो उसका भी हम देखें कि कई टाइम पे देखते हैं कि प्याज में उतार चढ़ाव कई ज़्यादा देखने को मिलता है वर्ष के अंतर। एक समय पे देखते हैं तो 5-10 रुपए किलो ही मिलती है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि 50-60 से लेके कई महीने हमको खरीदनी पड़ती है।
1: तो प्याज का प्रसंस्करण कैसे करें?
2: प्याज में प्रसंस्करण है कि हमारे किसान भाई प्याज का आप उसको डिहाइड्रेट करके, डिहाइड्रेशन एक शब्द है कि उसका जो पानी है
1: नमी,
2: उसको नमी को खत्म किया जाए, मॉइस्चर को खत्म किया जाए और उसको सुखा कर उसका आप चाहें तो पाउडर तैयार कर सकते हैं प्याज लहसुन में। ये करके हम देखते हैं मार्केट में भी आप छोटे छोटे पाउच में भी प्याज लहसुन के पेस्ट भी आता है और पाउडर भी आता है। तो ये चीज़ें जब हमारे पास पेस्ट रहेगा, पाउडर रहेगा, तो जब हमारे पास मार्केट में प्याज की मात्रा कम रहेगी और कीमत बढ़ जाएगी, उस समय हमें इसका मतलब प्रसंस्करण के द्वारा उस चीज़ तैयार की है उसका उपयोग कम दाम में एवं 12 महीने उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम मटर की बात करें तो मटर में भी हम देखते हैं कि 12 महीने हरी मटर नहीं मिल पाती है, लेकिन आज जनरली हम देखते हैं कि फ्रीजिंग के द्वारा उसको ठंडा करके एक पॉइंट पर, हम हरी मटर को ही ठंडा करके एक फ्रीज पॉइंट पर तैयार करके अगर उसको रखते हैं तो वो भी एक अच्छे भाव में और 12 महीने हमको हरी मटर के रूप में एज ए मार्केट में मिल जाती है और आप उसको यूज कर सकते हैं।
1: तो आपने 3 सब्जियों का जिक्र किया, खासतौर पर प्याज का किया, टमाटर का किया और मटर का किया। इसके अलावा शिवपुरी की कौन सी मेन क्रॉप है सब्जी के मोड के रूप में?
2: जी हाँ, अभी सब्जियों में तो हम देखें तो मेन तो टमाटर ही है शिवपुरी का।
1: और फलों में जिक्र करें, आपने जिक्र किया था 2 फलों का, एक आपने नींबू का नाम लिया था और एक जामफल का नाम लिया था। तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है?
2: जी हाँ, अमरूद में बात करें तो अमरूद का अच्छा प्रोडक्शन, जो हम कहें यहाँ का जो वातावरण है अमरूद और नींबू के लिए अनुकूल है, यहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है, लेकिन उतनी मात्रा में रकबा हमारे शिवपुरी ज़िले में इन फसलों में नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो अमरूद से, हम चाहते हैं तो अमरूद का हम देखें तो इसका पेक्टिन निकाला जा सकता है प्रसंस्करण के द्वारा, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसकी जेली भी बनती है अमरूद, वो भी कर सकते हैं। और नींबू का देखें तो नींबू का तो हम देखते हैं कि मार्मलेड एक उत्पाद होता है, वो बन सकता है। दूसरा इसका जूस के रूप में उपयोग करते ही हैं, जिस समय हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में लॉस ना हो तो हम सिकंजी या जूस में भी उसका उपयोग करते हैं और इसका अचार बना के भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं।
1: ये तो आपने बताया कि फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करके हम उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग बदल सकते हैं। अब बात आती है कि शिवपुरी ज़िले में इन सबको करने की सुविधाएं कितनी हैं?
2: ये हमारे युवा साथियों के लिए ये विशेष सवाल है और उनके लिए एक रोजगार भी पैदा करना है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत हमारे युवा साथियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। जो किसान भाई या युवा साथी इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी यूनिट आप बैंक के माध्यम से लोन लेकर इसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे विभाग से हॉर्टिकल्चर से आपको 35% तक का अनुदान उनमें दिया जाता है और 65% का अनुदान आपको किस्तों के रूप में बैंक में जमा करना होता है। और इसमें हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लगभग शिवपुरी जिले से बहुत अच्छे आवेदन हो रहे हैं, बहुत अच्छे रोजगार हो रहे हैं और बहुत अच्छे युवा अपना काम इस योजना के अंतर्गत कर रहे हैं।
1: अगर हमारे कृषक भाई किसी यूनिट को देखना चाहें तो क्या शिवपुरी जिले में इस तरह की यूनिट संचालित है?
2: जी हाँ, एक यूनिट रातौर में है, एक जेएनजी के हैं। हम जो किसान भाई चाहें तो हमारे विभाग में उद्यान विभाग में हमसे संपर्क करें, हम उनको दिखा सकते हैं यहाँ पर सॉस का निर्माण होता है।
1: प्याज के लिए?
2: प्याज के लिए जी हाँ, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन टीकमगढ़ में एक यूनिट है, वहाँ पर हम प्याज लहसुन एवं

0: अदरक के पेस्ट एवं ड्रायर जो सुखाकर पाउडर तैयार किया जाता है
1: जी
0: वो हम किसान भाई जो इच्छुक होंगे उनको हम दिखाएंगे और पूरा उनको समझाने की कोशिश।
1: और फल में अगर हम बात करें तो नींबू और जामफल जिनका आपने जिक्र किया, इनकी क्या स्थिति है?
0: इनका ज़्यादा रकबा नहीं है और
1: जी
0: ज़्यादा जनरल हम देखें तो आजकल नींबू अमरूद में तो हमने जैसे बताया कि अचार है जूस है तो इसका तो जनरल उपयोग सभी लोग करते हैं। अचार आजकल घर घर नींबू का डाला जाता है।
1: घर घर डाला जाता है, घर में 1 किलो का डाला जाएगा, 2 किलो का डाला जाएगा, लेकिन किसान जिसके यहाँ 10 क्विंटल नींबू है वो कितना अचार डालेगा?
0: ये बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अचार की डिमांड भी जिस तरीके से हम सलाद के रूप में टमाटर है प्याज है इनका उपयोग करते हैं वैसे अचार भी हर जगह सभी को ज़रूरत रहती है और इसका भी आप बड़े मात्रा पर तैयार कर सकते हैं और इसका भी आप मार्केटिंग कर सकते
1: क्या
0: हैं।
1: शिवपुरी जिले में आप उद्यान विभाग में उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, शिवपुरी जिले में क्या बाहर की कंपनियां चाहे शासकीय हों अशासकीय हों आकर इस सामान को क्रय करके इसका यूटिलाइजेशन बदल रही हैं?
0: जी हाँ, जैसे हम बात करें कि टोमेटो या प्याज में अपन ड्रायर करके मतलब उनका डिहाइड्रेशन करके या उनकी नमी को ख़त्म करके सुखा कर उसका अगर पाउडर बनाते हैं तो जैसे हम देख पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक किसानी वो सॉरी एक कंपनी का जिक्र चल रहा है और वो काम भी कर रही हैं कि अगर आप टमाटर को सुखाते हैं मार्केट में आपको टमाटर 5 से 10 रुपये किलो जब मिलता है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है शिवपुरी में तो आप टमाटर को सुखाइए हम आपको जो पाउडर तैयार होगा उससे 200 से 250 रुपये किलो तक उससे तैयार कर सकते हैं और उसके लिए ड्रायर जो सुखाने का ड्रायर आता है वो भी उद्यान की विभाग से आप प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन योजना के अंतर्गत
1: जी
0: उसका भी लाभ ले सकते हैं।
1: जी
0: उस पर भी 35% तक अनुदान विभाग से दिया जाएगा
1: जी
0: और उसे भी आप किसान भाई या युवा अपने लिए उपयोग कर सकते हैं।
1: आपने जिस रातौर की यूनिट का जिक्र किया वो लगभग कितने लंबे चौड़े उसे जगह चाहिए अगर किसी किसान को खोलना है, वो यूनिट बनाना चाहता है तो?
0: जी अब देखो अगर शुरुआत करना है तो आप केचप या सॉस की हम बात करें चटनी की बात करें तो लगभग ज़्यादा नहीं तो हम 3-4 हज़ार स्क्वायर फुट अगर एरिया है तो उसमें हम सॉस की या फिर यूनिट डाल सकते हैं केचप की डाल सकते हैं प्यूरी की डाल सकते हैं इतने एरिया में आप आसानी से एक यूनिट लगा सकते हैं
1: और
0: टमाटर के।
1: दूसरा यूनिट के लिए कितना लोन तक उसे लेना पड़ेगा, मतलब 65% कितनी उसकी वैल्यू बनेगी लगभग?
0: जी हाँ, अधिकतम हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो छूट है या
1: जी
0: अनुदान है
1: जी
0: वो अधिकतम उसकी राशि 10 लाख है,
1: जी
0: उससे अधिक अगर आप लेते हैं तो वो स्वयं जो युवा है
1: जी
0: लेने वाले कृषक हैं उनका उनकी किस्त के रूप में वहन करना पड़ेगा।
1: जी
0: हमारी 35% उद्यान की विभाग से अनुदान रहेगा लेकिन 35 में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग से दिया जा सकेगा।
1: यानी कि अगर वो 20-25 लाख का लोन लेता है तो
0: पैंतीस
1: उसका काम हो जाएगा, इतने से वो अपनी यूनिट खोल सकता है।
0: जी हाँ
1: तो जितेंद्र कुमार जाटव साहब, आप हमारे बीच में आए, हमारे सुनने वालों के बीच में आए, श्रोताओं के बीच में आए, फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण इस विषय पर बातचीत हुई। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर हम फल और सब्जियों का प्रसंस्करण कर सकते हैं, उसका किस तरह से मोड बदल सकते हैं, उसके उपयोग का यानी कि स्वरूप बदल सकते हैं और उसका भविष्य में उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं, और आपके उद्यान विभाग द्वारा इसमें जो सुविधाएं कृषकों को दी जाएंगी उसका भी जिक्र किया। आप हमारे साथ रहे बातचीत में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार किसान भाई।
2: तो भैया अभी अपन सुन रहे थे जे बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता जाको विषय है तो फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, और जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे थे श्री जितेंद्र कुमार जाटव जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी, बहुत ही बढ़िया जानकारी थी भैया जो। अब अपन आगे तो और बताएंगे, पहले अपन भैया एक और बढ़िया सुन लोकगीत सुनते हैं, जाए गाँव है मदन मोहन ब्रजवासी ने।
3: छोटो सो कन्हैया या के छोटे छोटे हाथरी, छोटो सो कन्हैया या के छोटे छोटे हाथरी, छोटो सोई मोह

तो भैया अभी अपन सुन रहे थे जो बढ़िया से लोकगीत। उम्मीद है भैया आप लोगों को पसंद आओ हो। अब भैया अब चलत चलत हम आप लोगों को देते हैं आज के मौसम की जानकारी। तो आज अपने शिवपुरी जिले को अधिकतम तापमान रहो 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता मतलब कि नमी रही 48% और हवा की गति रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये तो होती भैया आज के मौसम की जानकारी। अब अपने कार्यक्रम को समय भी हो रहा है समाप्त। तो अपनी साधना बहन को दो इजाजत। राम राम, जय जवान, जय किसान।

0: मोटी मछली, लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवीलाल, मिस्टर बीलाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ, मोमो मक्खियाँ। सर मैं आपको मतलब नहीं समझा।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवीलाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों मिस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
3: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
3: Yes sir, I also treat my every customer like my daddy.
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
3: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
1: राइट।
2: हम तो कहीं से कसके तक पहुंच ले जाइन लो पावर। चुप सर, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
3: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
2: जाए कैसे मैं साहब? चुप करो सर।
1: यस यस,
2: रियली यू आर अ ब्रेन।
3: रियली सर, यू आर अ जीनियस।
1: कस्टमर आया है।
3: कस्टमर ना कहिए सर।
4: वंडरफुल, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक हर चीज मिलती है।
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़े से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
4: वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी।
3: हाँ,
4: मुझे काफी ज्ञान मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई।
3: मोटी मछली?
1: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। मोटी मछली वो आप देखना है सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
4: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है। जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं। मिस पाउडर वाला, सबसे पहले हम वहीं चलते हैं। ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
4: मोटी मछली? ओ आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
2: आप की तरह।
1: सर ये देखिए।
4: I like it very very much.
1: Oh thank you sir, thank you. आपकी चॉइस बेमिसाल है सर. क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
4: मेरा छोटा बच्चा?
3: Yes.
4: Oh, he is only 5 months old.
3: Oh good.
1: Very good sir, very good. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे. सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है. ये देखिए लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट डिजाइन. क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
4: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: Oh wonderful sir, wonderful. Your choice is wonderful. Sir, ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
4: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ। यूँ समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
4: Wonderful, wonderful. यानी कि अपने आप चलती जाएगी।
1: हाँ सर, देखिए वो बात यूँ है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर।
4: ओह आई सी
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
4: ओह आई सी, वेरी गुड।
1: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
5: Good evening, sir.
4: Good evening.
1: Powder wala, be tactful. ये बहुत बड़ा कस्टमर है, मोटी मछली।
4: मछली।
5: Okay, boss. Sir, आप जरा हाथ आगे देंगे?
4: You mean मैं अपना हाथ बढ़ाऊँ?
5: Yes, sir. ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
4: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
5: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
4: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
5: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सब? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
4: लेकिन ये शैम्पू,
5: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
1: ओ मिस पाउडर वाला,
2: बच्चे चुप रहे,
1: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
5: आई एम सॉरी सर।
1: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
4: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
4: ओह यस
1: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
4: व्हाई नॉट
1: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
6: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
6: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।

0: मुझे हर सांस बजाने का शौक है। इट्स माय हॉबी।
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर सांस बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
0: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: तो सर, आप ताल, कहरवा, भैरवी, पहाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे या फिर आप फिल्मी गाने?
0: झुमका गिरा रे
1: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर आग

0: जाना,
1: चले
0: चले नहीं जाना, चले नहीं जाना।
2: चुप रहिए, मुझे आई मीन सिर्फ कथकली का रिकॉर्ड पसंद है।
3: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
4: फेर भी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
3: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है।
2: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड।
3: कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
2: You are right, you are right.
4: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ।
3: कोल्ड ड्रिंक?
4: सुनो सुनो सुनो,
2: मैंगो जूस,
4: मैंगो जूस लाओ।
3: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
4: सर ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
2: मैंगो जूस क्यों तकल्लुफ है?
4: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
2: भाई आप मजबूर कर तो खाना ही पड़ेगा।
4: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
3: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
4: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
3: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
4: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
0: ये सर
2: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
4: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
2: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
0: व्हाट,
4: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
2: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
4: जी एक पैकेट सुइयों का चाहिए, सुइयों का पैकेट।
2: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
0: अरे लेकनी फैन सुनो, अरे
3: साहब रुकिए,
0: अरे चले गए,
3: चले गए,
0: चले गए।
3: मोटी मछली।
5: मोटी मछली वी एम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में

0: अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज़ जल

0: ने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती हैं। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफ़र करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देख कर, फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूँगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे। वो एक

0: रोमांटिक हीरो बनना चाहती थी। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, में मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है, वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अति कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? You please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
1: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले, तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
5: अच्छा।
1: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहें तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
0: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
1: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
0: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस में टीवी को दूं, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होगी।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक ज़िद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी ज़िद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही ज़िद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियाँ दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
0: खेलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
2: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के। मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
0: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
2: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
0: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
2: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल। लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद

से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊँ कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊँ मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मज़ा आता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं

0: बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।
1: फिर आने लगा याद वही।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं, वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ली जाए।

जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना, कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
0: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय

सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के संचार सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 11 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है अरुण कुमार ने।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी को इतना सीरियस मत लीजिए कि आपके लिए भी जीना ही मुश्किल हो जाए। हंसी खुशी मस्ती से जिंदगी को जीना सीखिए। आइए सुनते हैं जमीर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से, लता मंगेशकर और मुकेश।

दोस्तों, अगर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे हम नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दें, तो आप बताइए कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम जिनसे नफरत करते हैं, या जो कोई नफरत करता है किसी से, तो उनके दिल में हम प्यार भर दें। तो बताइएगा हमें कि ऐसा क्या किया जा सकता है। उसे तभी सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।